0: सिद्धि विनायक गणपति देवा, चाहूं मैं सदा नाथ की सेवा।
1: तो राजेंद्र जी, जैसे कि आप अपने अभी आप हम सबको बताए कि और पार्सू से और कैसे वो एक दंत गणेश जी के, थोड़ा सा और सुना दो।
0: हाँ, वो परसु से जब जैसे ही परसु दंत पे लगा तो लोहित धार से खून एकदम निकला, धार एकदम, और सात दांत टूटा, उसके सात सात दांत टूटा और धरती पे एकदम धड़ाम से गिर गया,
1: कट के गिरा। तो ये तो हम अब सुन लिया है, पर अभी वृतांत बाकी है। और शांद्रा जी जो हम सब के साथ यहाँ उपस्थित है आज स्टूडियो में, तो संद्रा जी कभी, क्योंकि ये बात हुआ राजेंद्र कि मैंने गया और मूर्ति किनने को पूजा का दुकान में, तो मैंने देखा मूर्ति और लगा कि ये मूर्ति तो मैं नहीं खरीदने वाला हूँ, क्योंकि उसमें एक सुर टूटा हुआ था,
0: एक दंत,
1: तो पता नहीं था इसका मतलब। संद्रा जी, आपको कभी ऐसा हुआ कि नहीं?
2: ये बात है कि मुझे गणेश जी की मूर्ति को देखकर ये चकित नहीं हुई मैं, लेकिन माना जाता है, हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि टूटा हुआ मूर्ति खरीदना नहीं चाहिए, ये गणेश जी की बात नहीं है। वैसे ही आप मूर्ति खरीदो और देखो कि कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ पूरा नहीं है, खंडित है, तो उसे अपने पूजा स्थान में धर कर पूजा नहीं करनी चाहिए।
1: वैसे तो ना सिर्फ मूर्ति टूटा हुआ, घर में कोई भी चीज टूटा हुआ,
2: कोई भी सामान टूटा हुआ सामान नहीं रखना चाहिए।
1: बोले जो घड़ी ना चले तो
2: फेंक दिया जाए। हाँ, और टूटा हुआ बर्तन भी नहीं रखते है ना, कहते हैं लक्ष्मी नहीं आते है, तो टूटा हुआ मूर्ति तो जरूर नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन आज मुझे भी राजेंद्र जी से ये कहानी जो है, ये जो कथा है कि कैसे गणपति बप्पा की एक दंत टूटी हुई है, टूटा हुआ है, ये आज मुझे भी समझ आई।
1: तो दोस्तों, आप सुनते रहना क्योंकि अभी वृतांत बाकी है। तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम आगे बढ़ते हैं, और संद्रा जी का समझ में आ गया है कि क्यों दांत गणेश जी का एक टूटा हुआ।
0: हाँ, संद्रा जी समझ गई है, तो सभी लोग समझ ही गए होंगे। तो जैसे ही टूटा दांत धरती पर गिर गया तो उससे समूचे कैलाश शिखर पर कोलाहल होने लगा। कार्तिकेय कैलाश पर्वत, आप जाने लगा कैलाश पर्वत कहाँ रहे?
1: नहीं जाना है, पर कहाँ पर कैसे
0: आप जाने लगे ना?
1: नहीं जाने,
2: जाना है राजेंद्र जी, आप लेके चलो।
0: हाँ, लेके चलेंगे सबको कैलाश पर्वत पे। तो उस कैलाश पर्वत पे कार्तिकेय वीरभद्र भैरव नंदीश्वर एवं समस्त प्रथम गण क्या हुआ करते हुए दौड़ पड़े। सुनने में देवता अत्यंत भयभीत हो रहे थे। भगवान शंकर उस समय निंद्रित अवस्था में थे, उस शब्द से उनकी निंद्रा भंग हो गई। उस शब्द मतलब जैसे वो आवाज हुई दांत गिनने की, वैसे भगवान शंकर की नींद भी टूट गई और सब लोग क्या हुआ ऐसे करके भार गए। गिरिजानंदनी ने वह शब्द सुना तो तुरंत दौड़ी आई और द्वार लोहित देखकर क्षुब्ध होती हुई बोली, देखते हुए क्या बोली, पुत्र यह क्या हुआ, तेरे मुख से रक्त बह रहा है और धरा भी रक्तमयी हो रही है। धरा मतलब जमीन
1: रक्त से
0: वो क्या हुआ,
1: रक्त बोले खून ना।
0: हाँ, परंतु गणेश्वर जी कुछ लज्जित से कुछ रुआओं से मौन एवं शांत सिर झुकाए खड़े रहे, उन्होंने माता को कुछ उत्तर नहीं दिया। तब पार्वती जी ने कुमार कार्तिकेय जी से पूछा, पुत्र तुम ही बताओ यह क्या हुआ, इसका दांत कैसे टूट गया। कार्तिकेय वहाँ उपस्थित थे ही, उन्होंने सब कुछ स्वयं देखा ही था, इसलिए सब विवरण अद्योपांत सुनाते हुए बोले, क्षण भर में ही ऋषि ने परशु प्रहार कर दिया, अन्यथा मैं ऐसा कदापि न होने देता। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है जैसे हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला कि एक मिनट में तुरंत क्षण में परशुराम जी ने प्रहार कर दिया और ये ऐसे हो गए, नहीं तो मैं ऐसे नहीं होने देता। इसी समय शिवजी भी वहाँ आ गई। पार्वती जी ने दुखित मन से इनसे निवेदन किया, स्वामिन आप समदर्शी हैं, मेरे पुत्र गणेश्वर और आपके शिष्य परशुराम में से दोष किसका है, यह निर्णय आप स्वयं ही कर सकते हैं। हे प्रभु, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नारी तो अपने निंदित पतित मूर्ख दरिद्र रोगी एवं जड़पति को भी सदैव भगवान के ही समान समझती है, पतिव्रता नारी के तेज की समानता तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि और भगवान भास्कर भी नहीं कर सकते, इसलिए मेरे लिए भी आपके समान कोई नहीं है। तब आपके अतिरिक्त इसका निर्णय भी अन्य कौन कर सकता है। उधर परशुराम में भगवान शंकर को देखा तो उनके चरणों में प्रण हो भय रहित रूप की उनकी सेवा करने लगी। यह देखकर पार्वती जी ने परशुराम से कहा, महाभाग हे राम, तुम महर्षि जमदग्नि के अंश से उत्पन्न परम सती देवी रेणुका के पुत्र तथा देवादिदेव परमात्मा त्रिपुरारी के शिष्य हो। तुम्हारा मन शुद्ध है, इसलिए अशुद्धता का कोई कारण नहीं समझ रही हूँ। वत्स, तुमने जगतगुरु सर्वेश्वर से जो अमोघ परशु प्राप्त किया था उसकी प्रथम परीक्षा क्षत्रियों पर की और अब दूसरी परीक्षा गुरुपुत्र पर ही कर बैठे। पुत्र, त्रुटियों का निर्देश है, श्रुतियों का निर्देश है कि गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, किंतु तुमने तो गुरुपुत्र को ही एक दांत निर्दयतापूर्वक समूल काट दिया। यदि यही अभिष्ट था तो फिर इसका मस्तक ही क्यों न काट दिया। चराचर विश्व के आत्मा रूप भगवान शंकर का अमोघ अस्त्र पाकर तो एक श्रृंगाल भी बनराज सिंह का वध करने में समर्थ हो जाएगा। देखो परशुराम, गणेश साक्षात श्री कृष्ण का ही अंश हैं। या जितेंद्रिया पुरुषों में श्रेष्ठ होने के कारण तुम्हारे समान लाखों करोड़ों जीवों का वध करने में समर्थ हैं, किंतु वह हिंसा में विश्वास न करने के कारण कभी किसी पर हाथ नहीं उठाता। यही सभी देवताओं में प्रमुख होने के कारण ही प्रथम पूजा का अधिकारी बना हुआ है।
1: तो गणेश जी इसी कारण प्रथम पूजा का अधिकारी हुआ।
0: हाँ,
1: तो क्यों ना हम गीत को चलाते।
0: जरूर।

इस प्रकार से परशुराम जी का और गणेश जी का जो वृतांत है आगे बढ़ते हुए, परशुराम को निरंतर देखकर गिरिराज नंदिनी को क्रोध आ गया और वे मुनिवर को मारने के लिए प्रस्तुत हुई। यह देखकर भयभीत हुए परशुराम ने मन ही मन अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम किया और फिर गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी। तभी भगवती पार्वती जी ने अपने समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले एक ब्राह्मण बालक को आता हुआ देखा। उसके परिधान छत्र दंड यज्ञोपवीत आदि सभी उज्ज्वल थे। मस्तिष्क पर भी चंद्रमा की कांति के समान चमकता हुआ तिलक लगा हुआ था। कंठ में तुलसी की माला, माथे पर शुभ रत्न जटित मुकुट और कानों में कुंडित सुशोभित थे। उनके अंगों पर रत्नाभरण थे तथा वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ माता पार्वती जी की ओर ही देख रहा था। वह ब्राह्मण बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था। कैलाशवासी आवल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी उसकी ओर टकटकी लगाई निर्मिमिशेष नेत्रों से देख रहे थे। भगवान शंकर ने उसे देखते ही मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। यह देखकर भगवती गिरिजा भी उसे प्रणाम किए बिना न रह सकी। वस्तुतः वह साक्षात श्री हरि थे। भगवान शंकर ने उनके विराजमान होने का रत्नमयी सिंहासन प्रस्तुत किया। उनके स्थित होने पर विविध उपचारों से पूजन एवं स्तवन किया। उस पूजन से संतुष्ट हुए भगवान श्री हरि ने गंभीर रूप स्वर में कहा आरंभ किया, चंद्रमौली, यहाँ की वर्तमान परिस्थिति के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भक्त का कहीं कुछ अमंगल हो और इसलिए मेरा सहस्त्रतार्थ सुदर्शन उनकी रक्षा में सदैव उपस्थित रहता है। परंतु यदि कोई गुरु की अवहेलना करे तो वह चाहे जो हो मेरा कृपा पात्र नहीं रहता और उसके प्रतिकार के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु विद्या और मंत्र का देने वाला होने के कारण इष्ट देव से भी 100 गुना श्रेष्ठ है। इसी कारण गुरु से अधिक कोई देवता नहीं माना जाता। वैसे भी भगवान शंकर महादेव हैं, इनसे बड़ा कोई देव नहीं और न गिरिराज नंदिनी से बढ़कर कोई पवित्र पतिव्रता ही है। गणेश्वर से अधिक कोई जितेंद्रिय नहीं और परशुराम के समान कोई गुरु भक्त शिष्य नहीं है। किंतु परशुराम द्वारा आज गुरुपुत्र की जो अवहेलना हुई है उसका

0: मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश गजानन प्यारे लगे। तो गजानन तो सबको प्यारे ही लगते हैं और आपको भी गणेश गौरी गणेश पूजना ही चाहिए।
1: जरूर जरूर राजेंद्र जी, क्योंकि हमें ये वृतांत जो आप सुना रहे इसे सुनकर के भी कितना अच्छा लग रहा है कि आज हम सब कुछ है, कुछ भी तो ज्ञान के बातें कुछ भी और संदेश पाए हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में के माध्यम से हम सबको कुछ ना कुछ संदेश जो मिल रहा है। और आगे का क्या संदेश है राजेंद्र?
0: आगे का संदेश है कि वहाँ जो बात चल रही थी उसमें बोले कि इसलिए दोष भी किसे दिया जाए। शंकर जी बोले किसको दोष दिया जाए, यह भी एक प्रबल विवाद का ही विषय बन जाएगा। हिमगिरी नंदिनी, तुम्हारे पुत्र गणेश्वर तो वेदों में भी प्रसिद्ध है। इनके आठ नामों में एक नाम एक दंत तो बहुत ही प्रसिद्ध है। वे आठ नाम यह हैं: गणेश मेक दंता चा हीरंबम विघ्न नाशकम लंबोदरम सूर्पकर्णम गजवक्रम गृहागजम। गणेश एक दंत, हेरम्ब विघ्ननाशक, लंबोदर सूपकर्ण, गजवक्र और गुहागज्र के नाम से सर्वत्र मंगल को करने वाले और सर्वत्र संकट का नाश करने वाले होते हैं। गणेश जी के नामस्तक स्त्रोत अपने अर्थों में संयुक्त एवं शुभ करने वाला होता है। जो भक्त इसका तीनों सानिध्यों में पाठ करता है वह सभी प्रकार से सुखी होता है और सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। उस स्त्रोत के पाठ से विघ्नों का नाश उसी प्रकार से हो जाता है जैसे गरुड़ के द्वारा सर्पों का नाश होता है। हे दुर्गे, इस स्त्रोत का प्रायण करने वाला गणेश्वर की कृपा महान ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाता है। इसके प्रभाव से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, पत्नी की अभिलाषा वाले को पत्नी और महामूर्ख को भी श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होती है। यह निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। उस बामन भगवान ने जगजननी उमा को यह नामाष्टक स्त्रोत इस प्रकार बतलाया: ज्ञानार्थ वाचको गच्छ गणश्च निर्वाण वाचका तयोरीषि प्रब्रह्मा गणेशं प्रणमायहम्। एक शब्द प्रधानार्थो दंतस्य बालवाचका बलं प्रधान सर्वेशं मेदकंदन नमाम्यहम्। दीनार्थ वाचको हिश्चारंभा पालक वाचका दीनानां परिपालकं हीरंभ प्रणमान्यमहम्। विपत्ति वाचको विघ्नो नायका खंडनार्थका विपत्ति खंड का कारम नमामि विघ्नाय नायकम्। विष्णु दत्तेश्च नैवेद्यस्य लंबोदरम पुरा पित्रा दत्तेश्च विधिवन्दे लंबोदरम चातमः। सूर्पोकारो च यत्कर्णी विघ्नवारण कारणो संपद्दो ज्ञान रूपे चा सूर्पकर्णा नमाम्यहम्। विष्णु प्रसाद पुष्पम चा यन मूर्तिम मुनि दंतकम तद गजेन्द्र वक्त्रायुक्तम गजवक्रम नमाम्यहम्। गुहास ज्ञाग्रौ चा जातो यंबा विमूर्त हरलये वंदी गुहा गजम देवम सर्वदेवा गणपूजितम्। अर्थात गा ज्ञानार्थ वाचक और अणा निर्वाण वाचक है। इन दोनों गा और अणा अक्षरों के जो ईश्वर हैं उन गणेश्वर रूप पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। एक शब्द प्रधानार्थक और दंत शब्द बलवाचक है। इस प्रकार जो एक दंत भगवान सबसे अधिक बल प्रधान हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थ वाचक और अम्ब शब्द का पालक का वाचक है, इस प्रकार दोनों का परिपालन करने वाले हीरम्ब को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्न शब्द विपत्ति वाचक और नयन शब्द खंडवार्थनार्थक है, अतः जो विपत्तियों के नाशक है उन विघ्न नायक को मैं नमस्कार करता हूँ। प्राचीन काल में भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त नैवेद्य और पिता द्वारा समर्पित विविध प्रकार के मिष्ठानों के सेवन से जिनका उदर लंबा हो गया है उन लंबोदर को नमस्कार करता हूँ। उदर यानी पेट लंबा हो गया, मतलब
1: पेट
0: मिठाई खाने से पेट बढ़ गया। जिनके कान सूपा होता ना उसके समान हैं, तथा जो विघ्नों के निवारण में कारण समस्त संपदाओं का दाता तथा ज्ञान स्वरूप है उन सूर्पकर्ण गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि प्रदत्त भगवान विष्णु का नैवेद्य रूप पुष्प विद्यमान है और जो गजेंद्र के मुख से संपन्न है उन भगवान गजवक्र को मैं नमस्कार करता हूँ। गणेश के इस नामाष्टक स्त्रोत का उपदेश करने के पश्चात भगवान श्री हरि ने परशुराम से कहा, भृगुनंदन तुमने गणेश्वर का एक दांत तोड़कर अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम इस दोष से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक जगत जननी पार्वती जी को संतुष्ट न कर लो या गिरिजानंदिनी सर्वशक्ति स्वरूपिणी प्रकृति से परे एक निर्गुण है, इन्हीं की शक्ति से गोलोकनाथ श्री कृष्ण भी शक्ति संपन्न हुए हैं या समस्त देवताओं की भी माता है, अतः स्वप्न द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। परशुराम ने भगवान श्री हरि की आज्ञा शिरोधार्त मानकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर भगवान अपने धाम को जाने के लिए प्रस्तुत हो गए, अंतर्धान हो गए। उसके पश्चात परशुराम ने पवित्र जल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने और फिर जगन माता पार्वती जी का स्तवन करने लगे। उन्होंने माता पार्वती के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और नेत्रों से आनंदाश्रु यानी आनंद के आंसू प्रभावित करते करुणा प्रार्थना के अंत में सहसा बोल उठे, रक्ष रक्ष जगन माता अपराधम क्षमस्व मे, शिशूनाम प्राधीना कुतो माता ही कुष्यति, हे जगत जननी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। माता शिशुओं से जो अपराध हो जाता है उस पर माता कभी क्रोध नहीं करती अर्थात नहीं करती। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात रेणुकानंदन ने गिरिजानंदिनी के चरण पकड़ लिए और बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे। यह देखकर माता पार्वती जी से रहा नहीं गया, उनका वात्सल्य भाव उमड़ उठा। वात्सल्य मतलब बच्चों के प्रति जो भाव होता है माता का,
1: हाँ जी,
0: क्षमा कर देती है, तो वात्सल्य भाव उसको कहते हैं,
1: वात्सल्य भाव।
0: हाँ, वो बोली, आप मथुरा में जाएंगे तो वहाँ वात्सल्य ग्राम मिलेगा आपको।
1: क्या मिलेगा?
0: वात्सल्य ग्राम आश्रम।
1: वात्सल्य ग्राम आश्रम मथुरा में,
0: मथुरा में रितंबरा दीदी ने बनाया है। वही बोली, वत्स तुम चिरंजीवी हो, तुम्हें अमृत्व की प्राप्ति हो, तुम्हें श्री गुरुदेव परमात्मा शिव की कृपा से सुदृढ़ भक्ति प्राप्त हो तथा तुम सर्वत्र विजयी हो, सर्वात्मा भगवान श्री हरि तुम पर सदा प्रसन्न रहे। माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त होने पर भृगुनंदन परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने सुना सभी दिशाएं भगवान नाम से व्याप्त हो रही है, सर्वत्र उन्हीं को जय जय घोष सुनाई दे रहा है। ममतामयी पार्वती जी परम संतुष्ट होकर अंतापुर में चली गई। अब परशुराम जी भगवान एकदंत गणेश्वर का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर प्रतिपूर्वक उनका स्तवन करने लगे। इस प्रकार गणराज की प्रसन्नता प्राप्त कर परम गुरु भगवान शंकर को नमस्कार किया और उनसे आज्ञा लेकर तप करने के लिए तपोवन में चले गई। तपोवन कहाँ?
1: पता नहीं राजेंद्र जी कहाँ है, शायद सांद्रा जी को पता होगा।
0: हाँ, जो गंगोत्री के ऊपर गौमुख है, गौमुख से हौर ऊपर 14 किलोमीटर तपोवन है।
1: तपोवन
0: तो वहाँ तपस्या करने के लिए चले गए
2: जंगल
0: में। ओम गंग गणपतये नमः, श्री राघव कुंज बाबा भैरवनाथ नारायण ज्योत बाबा गंज बहराय की जय हो। तो इस प्रकार से ये आज का जो वृतांत रहा, इस प्रकार से रहा। तो अब हर सप्ताह की भांति इस बार भी हमारा जो
1: वो आखिरी गीत की ओर हम
0: आखिरी गीत की ओर हम पहुंच रहे हैं,
1: तो जरूर राजेंद्र जी आखिरी गीत की ओर
0: बोल, आपको क्या बोल है आखिरी?
1: लागी छूटे ना, जो हमारा गीत होता है तो उसी ओर हम सब बढ़ने वाले हैं। और
0: तो क्यों ना हम लागी छूटे ना की

को पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया, तो क्यों ना पुकारे। जैसे हम इस गीत की ओर बढ़ते हैं हमारा समय पूर्ण होता है। हमारा जो कार्यक्रम होता है 2 घंटे का कार्यक्रम में, ये हमारा जो बॉर्डर का गाना है इस पर और हम बढ़ते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो फाउन हिंदुस्तानी के श्रोताओं को जो हमें इतने प्रेम से सुनते हैं, और हमारा ये जो प्रोग्राम है उसके बहुत लोगों का फ़ोन भी आता है, उनको अच्छा लगता है। इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए मेरा नमस्कार, यानी राजेंद्र सिंह का नमस्कार।

हाँ जी सुनने वालों, अब तो हमारा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होने को आए हैं। आशा है कि ये जो वृदांत हमने आपके लिए रखी थी, कुछ भी इसमें आप निकाल कर अपने जीवन में जरूर उतारो। थोड़ी सी बात लेकर चलो, अच्छाई ही लेकर चलो, दुनिया ही बदल जाएगी। नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाते हैं। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज यहाँ का कार्यक्रम जो अपने समाप्ति पे आकर पहुँचे हैं, हम सब यहाँ से आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। और आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले जो सांद्रा घिसई दुबे, हमारे राजेंद्र सिंह जी जो पनेल के पीछे बैठे हुए हैं, और मैं हूँ आपका सेवक संजय जो आपके साथ ये कार्यक्रम को किए। आशा यही रखता हूँ कि जरूर कुछ न कुछ संदेश आपको पास पहुँचा होगा, और फिर मिलेंगे। नमस्कार।

सुनो लो, मैं आपका सेवक संजय और कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। कहते हैं कि किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है ये आप खुद समझदार है, या कर्म के रास्ते पे चलेंगे या धोखा देने का इच्छा रखते हो।

क्योंकि इस बात को भी हम जानते हैं कि जब इंसान का वक्त और हालात खराब होता है तो बहुत कुछ सुनना और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। यह जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि जिंदगी में कामयाब होना हो तो एक बात हमेशा याद रखना, पांव भले ही फसल जाए पर जुबान को कभी फसलने मत देना। जैसे पंछी अपने पांव के कारण जाल में फंसते हैं परंतु मनुष्य अपनी जुबान के कारण।

आए हूँ संजय और कुछ ना कुछ तो सुनाते रहेंगे, क्योंकि किसी ने ये भी कहा है कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। तो हिम्मत जो है तो वैक्सीन का क्या।

क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, जैसे इस गाना का धुन भी बदल गया। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। दोस्तों, आप अपने आप को किस प्रकार से बदलने चाहते हैं? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं।

जैसे कि अभी आपने सुने। नो मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं। लौटने का रास्ता बस ये मत गवाना।

क्योंकि कहा गया कि असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह है जो हम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिसके परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है।

विषय से आपको सुख को प्राप्त होगा, क्योंकि किसी ने यह भी कहा है कि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है, जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो चाहे देर से आएगा लेकिन आएंगे जरूर। बस धैर्य रखो और खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों को साथ देती है।

याद रखना, ये किस्मत भी क्या चीज है ना, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों का साथ देती है। और जो साथ देती है तो वो बस ये तीन शब्द जरूर कहते हैं, छोटे छोटे शब्दों है, मैं हूं ना, और मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं।

खुशी के लिए बहुत कुछ। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हम समझते हैं। और ऐसा हम क्यों समझते हैं? किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुने कि खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव करता है।

दौलत उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है।

दौलत उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है। और सम्मान कोई बैंक नहीं होता है। सम्मान कोई बैंक नहीं होता, उसकी गारंटी सिर्फ आपका चरित्र देता है। दोस्तों, अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। खुद से हारने का बस ये अपने दिमाग से निकाल दे। तो जीत निश्चित हो जाता है। क्योंकि कहा गया कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं अगर हमारा वक्त अच्छे हो तो।

यह भी हम जानते हैं कि जीवन भी ठीक एक स्टेशन की तरह है। आप तो जरूर ट्रेन स्टेशन पे गए होंगे। इसी प्रकार से जीवन भी ठीक स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। हम इस संसार के मेला में रह रहे हैं और ठीक जीवन भी एक स्टेशन की तरह यह संदेश भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। उसे कौन बदलता है? उसे मजबूर कौन कर देता है? कहते हैं कि लोग और वक्त और हालात। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। और ये मजबूर करने वाला लोग, वक्त और हालात।

तो कहते हैं कि जीवन के पथ प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है।

को जरूर आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। क्योंकि जीवन में पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। और याद रखो, पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट बर्दाश्त करना पड़ती है।

मन की सोच सुंदर हो तो मन की सोच जब सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर लगता है। और मन की सोच जो सुंदर ना हो तो जब सुंदर ना हो तो मैं ये आपके ऊपर रख देता हूं।

दोस्तों, उम्र का मोड़ कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। और ये नशा जब जिंदगी जीने का होना है जीने में भी मजा लेंगे। उम्र चाहे जो भी हो, उम्र चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जीने की, क्या जीने की, जिंदगी जीने की। कहते हैं कि प्लसीर हबन इन अतलीफन,

क्योंकि एक ना एक दिन तो कहा गया है कि हम कहानी बनकर के रह जाएंगे हम सब।

और दोस्तों शायद इस बात को भी आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो संजय किस कारण यहां बैठे हैं।

क्योंकि बिना रुके सफर कर रहे हो। और किस चीज का सफर? उम्र का सफर। उम्र बिना रुके सफर कर रही है।

उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम क्या करते हैं। हम अपने ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। आप इस ख्वाहिशों को छोड़ सकेंगे? क्योंकि ये उम्र कहीं रुकती नहीं है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। कहते हैं कि उम्र बिना रुके सफर कर रही है।

क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और हमें क्यों टाइम नहीं है? कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है जिम्मेदारी। जिम्मेदारियां और घेरे हुए और जो भी इस दवा को एक बार ले लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होती है।

छोटे शब्दों। इन तीन छोटे छोटे शब्दों आपके द्वारा कहे गए, ये तीन शब्द जो किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं।

की खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसे मंद इंसान के साथ बांटने चाहिए। और आप किसको भरोसा कर सकते हैं?

संत ने भी बड़ा अच्छा कहे थे। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा था कि जीवन का असली सच प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दो वो अधूरा छोड़कर चले जाता है।

सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता।

दोस्तों इस बात को गौर से सुनो कि माँ बाप वृक्ष के उन पत्तों की तरह है जिनकी छावा में तुम्हारा बचपन पला है। उनके इस उपकार को याद रखना और बुढ़ापे में उनका सहारा बनना।

कि कुछ समय जब बीत जाता है जीवन का तो जिसे हम शायद बुढ़ापा कहते हैं वो कुछ भरोसा करने लगते हैं अपने बच्चों पे। धीरे धीरे ही सही पर सब हासिल होगा।

धीरे धीरे ही सही, पर सब हासिल होगा। जो कुछ खोया था अब तक सब वापिस होगा। यही सोचते हैं, क्योंकि इस बार भरोसा गैरों पर नहीं खुद पर है।

जैसे कि अभी आपने सुने। माँ बाप कभी गलत नहीं होती, माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

जरूर ध्यान देना। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

और कहे गए हैं कि माता पिता को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। क्या है इसमें? इसमें भेद क्या है? क्योंकि ईश्वर भाग्य से हमारे सुख और दुख दोनों लिखते हैं, जबकि माता पिता केवल सुख ही लिखते हैं।

आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। अंदर से एक मजबूत फैसले उसका जरूरत जरूर होता है।

हो सके तो, हो सके तो अगर अपने जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना। जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। क्योंकि स्वार्थी कुछ और होता है।

सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाइए जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी जाए।

की इस बात को भी याद रखना। हमेशा याद रखना, जीप कभी नहीं फिसलती है।

हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है, दिमाग में जो चल रहा है वे हमेशा जीभ पर आता है। तो इस बात पे कुछ और रखना चाहता हूं। गुरु जी ने इस बात को कहे थे, पैरों का गरम, पैरों का गरम पेट को नरम और सिर ठंडा रखे।

क्योंकि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है।

समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता।

बचता है क्या? बचता है कि सबर करना सीख लो, सबर करना सीख लो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा।

मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान में मोहताज नहीं है।

पित्र मित्र चित्र और चरित्र। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं।

दोस्तों ये गलत फैमिली में ना रहे। करते क्योंकि गलती पीठ की तरह होती है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है अपनी नहीं।

लोगों ने कहा है। ये बुजुर्गों भी क्या क्या कह गए। बुजुर्गों ने कहा है कि रूप और रुपया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये रूप और रुपया, इस पर कभी घमंड ना करें दोस्तों। क्योंकि ये इंसान के पास सदा नहीं रहते हैं।

बीज लेकर चलने वाला अक्सर डूब जाते हैं। तो दोस्तों, बोझ सिर से ना ले, ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं। फिर चाहे वो बोझ क्रोध का हो, बदले का हो या अभिमान का। विश यू ऑल अ वेरी गुड डे।

तक हम आपके साथ दिए कुछ समय तक यही आशा लेकर कि कुछ न कुछ और आपको अच्छा लगा होगा। यही कहना चाहूंगा। सुनते रहना फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक शहर, हर एक कोने, हर एक स्थान पे

फिल्म से निकाला हुआ ये सुंदर सा गीत एक नया फिल्म है जिसमें आहान पांडे जो काम किए है, और मेरे ख्याल से ये आहान कोई और नहीं है चौंकी पांडे का भांजाल, यानी कि उनका नेफ कहा जाता है। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ नए नए गीतों के साथ हम कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। दूसरा गीत जो हमने प्लेयर पर खोज करके रखे हुए है, एक फिल्म जो 2025 में नई खंती मार्च में जो जिसका प्रीमियर हुआ है, उससे पहले कितना पैसा कमा चुका थे, और फिल्म जो एक मार तार वाला फिल्म है, खूब धुरंधर नाम, जिनमें रणवीर कपूर, रणवीर सिंह ने काम किया ना, रणवीर सिंह ने काम किया है, और आदित्य धार जो ये फिल्म को डायरेक्ट किए है। तो इसमें भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ देखते हैं, और प्लेयर पे तो चुन करके मैंने रख चुका है, तो चलाते हैं और देखते हैं उसमें क्या। और

एक फिल्म जिससे बॉलीवुड काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, और एक फिल्म जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ समस्याएं इसमें रखा गया है। दूसरा भाग जो बनाया गया है वो लगभग 4 घंटे के है, और एक फिल्म जिसे हम लगातार देखते रहते हैं। हमने तो कहा गया कि बियोस्कोप में ऐसा होता है माहौल कि शायद इंटरफॉल भी नहीं रखा जाता है, और कोई उठकर जब वहाँ से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि ये इतना सुंदर रूप में और बनाया गया है कि आप सो न्यूज़कीरक बे हम नाटक कहकर। इसी प्रकार से और भी फिल्मों जो बॉलीवुड 2025 और 2026 में रिलीज करने वाले, एक और भी सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, कोई और नहीं, और जिसमें अक्षय खन्ना और जानवी कपूर के

सोम कोई और नहीं, बस सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो। और एक फिल्म जिसमें अक्षय खन्ना, जानवी कपूर ने काम किए, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग जो 2025 में आया। अगला गीत हमने प्लेयर पर चुन करके रखे है, सुनने वालों, टाइगर 3, सलमान खान और कतरीना का फिल्म।

का नाम, तो सब कहते हैं कि कोई भी काम करो तो लेकर प्रभु का नाम। तो यहाँ तो अपना संगीत में उन्होंने ये रखा कि म्यूजिक स्टार्ट करो तो लेकर प्रभु का नाम, पर कहने के तात्पर्य ये है कि कोई भी काम शुरुआत करो तो प्रभु का नाम लेकर। अगला सॉन्ग जो हमने चुन कर रखे हुए है वो हम सफ़र मेरे, शाहिद कपूर और कृति सनान। एक रोमांटिक सॉन्ग है जो भी नया 2026 में और ये फिल्म रिलीज किया गया।

सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत निकाला गया एक फिल्म जिसमें शाहिद कपूर ने 2026 में फिल्म रिलीज हुआ और हम सफ़र मेरा। हम अगला गीत जो चुन करके रखे हुए हैं और अगला गीत का बोल ऑल्सो बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं और इसमें क्या संदेश रखते हैं, किस प्रकार से अपना रोमांस को और रखते हैं।

तू ही मेरा आज और तू ही मेरा कल, अ हिंदी इंग्लिश डुएट जो एत शेरान और श्रिया घोषाल अपने आवाज में रखे अति सुंदर रूप से और अपना रोमांस को प्रकट किए। दोस्तों, हम अगला गीत जो दिल तेरा नाम रणवीर सिंह जिस फिल्म में काम किया है 2026 में जो रिलीज हुआ धुरंधर, उससे एक और गीत रखेंगे।

फिल्म जिसमें काम किए हैं रणवीर सिंह और नया कलाकार सारा जो अपना कला को प्रदर्शन किए है। दोस्तों मैं एक और सॉन्ग चुनकर रखे हुए हैं 2026 के नए सॉन्ग से निकाला हुआ तेरा प्यार में, और ये फिल्म में आर्यन खान जो शाहरुख खान का बेटा है उसने काम यानी कि उसके ओर से रखा गया। देखते हैं क्या सुना रहे हैं।

जो रजिस्टर हुआ है और देखा जाए कि कितना सुंदर रूप से ये अपना कला को प्रदर्शन किए हैं। एक और फिल्म का नाम जो भूत बंगला है अक्षय कुमार का, और ये भी अभी रिलीज नहीं हुआ है, आने वाला है। अक्षय कुमार का भूत बंगला, जो उससे मैं गीत रखने को कोशिश करेंगे।

0: समझ रहे हो कि जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: ये भूत बंगला जो फिल्म बनाया गया है और 2026 में रिलीज होने वाला है, प्रिया दर्शन फिल्म, जो काफ़ी दिनों से प्रिया दर्शन ने फिल्म नहीं बनाए थे और अब अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ जो ये फिल्म बनाया गया है, एक भूत बंगला जो एक कॉमेडी फिल्म में कहा गया है। और प्रिया दर्शन के फिल्म में तो कॉमेडी और कुछ उस हर एक फिल्म में उसका देखा जाए कि लोग एक दूसरे के पाछे दौड़ते तो जरूर है। और अभी तो रिलीज नहीं हुआ पर हाल ही में रिलीज होने वाले हैं। और अगला गीत जो हमने चुन करके रखे हुए दोस्तों प्लेयर पे, वो भी एक 2026 का फिल्म जो कि इमरान हाशमी और आशी खन्ना का फिल्म है, रोमांटिक सॉन्ग दिल में तू।

ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी का फिल्म जो जिसमें से ये सुंदर सा गीत निकाला गया। दोस्तों यहाँ तक मैं आपके साथ जुड़े रहे, हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ रहे हैं।

प्रिय भाई बहनों, जब हम हिम्मत करते हैं तो ताकत बढ़ती है। जब हम जुड़े होते हैं तो एकता बढ़ती है। और जब हम स्नेह करते हैं तो प्यार बढ़ता है। और जब हम देते हैं तो

भाई बहनों, आपका अच्छा व्यवहार आपके रिश्ते को निर्धारित करता है। यदि दुनिया में कोई वास्तविक चुंबक है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, तो वह आपका प्यार और आपका व्यवहार है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये आपकी संपत्ति है या धन है। नहीं दोस्तों, नहीं, ये आपकी संपत्ति या कुछ और नहीं है, ये सिर्फ आपका प्यार और आपका व्यवहार है। आपका व्यवहार है, ये आप अपनी जीवन में लागू कीजिए मित्रों, लागू कीजिए।

दोस्तों, गलतियां, असफलताएं, अपमान, निराशा और अस्वीकृतियां प्रगति वृद्धि का हिस्सा है। इन पांच चीजों का सामना किए बिना किसी ने कभी भी कुछ भी मूल्यवान हासिल नहीं किया है। मित्रों, मुझे क्षमा करना, तो क्या आप कोई विशेष इंसान हो जो ये पांच चीजों का सामना किए बिना सब कुछ हासिल कर लेंगे? नहीं, नहीं, आपको भी इस चक्की में जाना पड़ेगा। और जब आप इससे बाहर निकलते हैं, तब आप एक वास्तविक अनुभवी व्यक्ति होते हैं। मित्रों, ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना।

भाई बहनों, खूबसूरत दिन तब आता है जब आप जागते हैं और पाते हैं कि जीवन अभी भी आपकी दुनिया का रंग है, क्योंकि उन लोगों की वजह से जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं और आपको कभी नहीं भूलते हैं, और इसका अनुभव केवल तभी कर सकते हैं जब आप वास्तव में दूसरों के प्रति मधुर और दयालु हो। यह आप पर अच्छा लगेगा, ये आप पर अच्छा लगेगा। इसलिए बिना किसी घमंड के हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें मित्रों, बिना घमंड के।

चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे

सुनने वालों, मैं हूँ आपका सेवक संजय और कुछ समय तक मैं आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। संदेश भी रखा जाएगा।

आशा रखता हूँ कि मनुष्य की पवित्रता की ओर मनुष्य की पवित्रता की ओर कुदृष्टि रखा जाएगा।

कहते हैं कि मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ अर्थात अति उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और अच्छे श्रेणी का प्राणी है।

परंतु यहाँ एक विचारणीय बात है, क्या वास्तव में वे सर्वश्रेष्ठ है? यदि वर्तमान स्थिति का अवलोकन करे तो पाएंगे कि मनुष्य सर्वोत्तम से निम्नतम श्रेणी का बन चुका है।

प्रती पल निमंता की ओर गिरता जा रहा है, कारण कि परमात्मा ने मानव संरचना में आवश्यक अंगों का निर्माण किया है। एक एक अंग अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका एक विशेष प्रयोग होना था। आइए आइए जानिए किस प्रकार जो हमारे अंगों हैं उन्हें हमें प्रयोग करना चाहिए था।

सुनो वालो, जैसे कि संतों ने निर्माण किया है कि जैसे हमारे आँखें हमारे शरीर के अंग भी है, जिससे इस संपूर्ण जगत को देख पाते हैं। इसका मूल प्रयोजन था कि हरि दर्शन, संत का दर्शन और लौकिक अनुभवों का दर्शन। परंतु संसार में व्यक्ति ने अज्ञानवश इन नेत्रों का दुरुपयोग कर इन्हें मलिन कर दिया है। बाहरी जगत के गलत दृश्य देखकर हमारे नेत्र मलिन होते चले गए।

संतों ने क्या खूब लिखा है कि दूसरा जो ईश्वर ने हमें दो सुंदर हाथ दिया है, हाथों का प्रयोजन था कि दूसरे के हित के लिए निस्वार्थ सेवा, संतों की सेवा, दान आदि करना, परंतु नादान मनुष्य पाप की सीमा पार कर चुका है।

हाथों से वे दूसरे की हत्या तक कर डालता है। कुंकर्म करता है जिसके कारण हमारे हस्त मलिन हो गए।

हमारे तीसरे अंग तीसरा, परमात्मा ने मनुष्य को एक जिह्वा दी है। जिसका गुण था कि बोलना हमें सत विचारों, शुभ वाणी और मंत्रों उच्चारण द्वारा जिह्वा को पवित्र बनाना था, परंतु दुर्भाग्य से आज इस जिह्वा का प्रयोग दूसरों को भला बुरा कहने, अवगुणों का बखान, दोषों वे कमियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इससे समाज, परिवार और राष्ट्र में दुखों, फसाद और लड़ाई झगड़े शुरू हो गई। परिणाम स्वरूप जिह्वा मलिन हो गई।

चौथे अंग के अंतर्गत हमारे संतों ने लिखे हैं कि परमात्मा ने मानव संरचना में ये बुद्धि प्रदान किया है। बुद्धि जिसका प्रयोजन था कि परमात्मा यानी कि उस परम तत्व के विशेष में जानना, परंतु बुद्धि का प्रयोजन हमने कांच के टुकड़ों, सोने चांदी बाहरी धातु को तराशने में किया। बाहरी जगत के जानकारी एकत्र करने के लिए किया। संसारिक विशेष्यों के बारे में जानकर बुद्धि मलिन हो गया। चलो हम एक भजन के ओर बढ़ते हैं और उसके बाद हम ये संदेश को आगे रखने की कोशिश करेंगे।

सुनने वालों, परमात्मा ने मनुष्य को दो श्रवण भी दिए हैं। श्रवणों को प्रयोग हरि चर्चा को सुनने के लिए करना था, परंतु इन श्रवणों से हम दूसरों की निंदा चुगली सुनते हैं और इन्हें मलिन कर बैठे हैं।

कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर को स्वच्छ और निर्मल रखने हेतु प्रतिदिन उसे स्नान कराना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जीवन को निर्मल बनाने के लिए भक्ति रूप जल से इसे स्नान कराना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे।

सुनोलो इस कार्यक्रम को जो अलमेरा शहर से पंडित राजन जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उनके ओर से ये संदेश भी रखा जाता है कि शिक्षा अकेला ना कर पाएगी, मानव का उद्वार दीक्षित होकर करना होगा, विकारों का संहार।

और आगे कहते हैं कि घंघोर है हो चुकी निशा की तमस की छाई है दुर्भावों की हर कन में उमस सी छरण करो अज्ञानता का ले धर्म का आधार दीक्षित होकर करना होगा विकारों का संहार।

भौतिकता की डोर में अध्यात्म है लुप्त हुआ, मानवता का मरम ही हर हृदय में सुप्त हुआ। व्यक्ति नहीं किया कभी प्रतिपालक का आभार, दीक्षित होकर करना होगा विकारों का संहार।

सुनने वालों, जैसे कि हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले हैं इस दनहाग शहर से श्रीमती विमला जी, जो अपना बचपन का संदेश भी अभी रखे और कह रहे थे कि ब्लूमंदाल के निवासी क्रोबियास्त्रात में जन्म से और वहाँ अपने भाइयों बहनों माता पिता के साथ रहते और आज 50 साल से भी ज़्यादा के बाद सोच करके इस संदेश को रखते हैं कि जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कोई दुश्मन, वे तो हमारे घमंड और ताकत या व्यवहार से बनते हैं। यह सुंदर सा संदेश उनके ओर से रखा गया और कहते हैं कि जिंदगी को अगर खोल करके जीना है तो थोड़ा सा झुक करके जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देंगे।

संदेश रखा गया और हमारी एक और संदेश जो यूएफ वैष्णवी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उनके ओर से ये संदेश रखा जा रहा है, पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, सूरज गर्म जरूर होता है लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। यह वैष्णवी के ओर से यह सुंदर सा संदेश। जो सैफन हाउस के निवासी

दोस्तों, अगर हम देखें तो एक और संदेश आए हैं डनहाग फिशरस्ट्रात से श्रीमती मरैका जी, उनकी ओर से ये संदेश हमें और सुनने को प्राप्त होगा कि कोई लिखा हुआ दस्तीज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है।

सुनने वालों, ये इस कार्यक्रम को लेली स्टार्ट शहर में श्रीमती अहिल्या जी भी सुनते हैं और उनके ओर से उन्हें भी कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, कुछ संदेशों भी उनके ओर से और रखा जा रहा है। संदेश में ये संदेश है कि अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता, यदि मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाले पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण होता रहा और तुम चुप कर बैठे रहे। धर्म मिटने का है धर्म रक्षा के लिए, अगर राम नहीं बन सकते तो कम से कम जटायु तो बनो।

कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। ये सुंदर सा भजन हम सुने और कहते हैं दोस्तों कि मृत्यु और अमृतत्व, मृत्यु और अमृतत्व दोनों एक ही देह में निवास करते हैं। कहते हैं कि मोह के पीछे भागने से मृत्यु आती है और सत्य के पीछे चलने से अमृतत्व प्राप्त

दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि शब्द का भी तापमान होता है। कहते हैं कि शब्द जो कि तापमान कभी गर्मी हो जाता है, ये सुकून भी देता है और जला भी देता है। तो आपको एक शुभ दिन प्रस्तुत करते हुए और इस पे आप जरूर ध्यान देना। कहते हैं कि शब्द का भी तापमान होता है। ये सुकून भी देता है और जला भी देता है। और आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से, इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में इसको सुना जा सकता है। और जो अभी चुन किए हैं फाउन पे, तो उसे हार्दिक से अभिनंदन।

pedaço tal. कहां शुरू कहां खत्म सुनने वाला मैं हूं आपका सेवक संजय। और जरूर कहीं शुरू होता है पर खत्म कहां होगा ये मुझे ना पता। के साथ जुड़ गए हूं और इस बात को कहूंगा कि आप जुड़े हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से। कहीं भी आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हो, दुनिया के हर एक देश में इंटरनेट द्वारा सभी को हार्दिक से अभिनंदन करता हूं। और ये जरूर कहूंगा कि अजीब दासता है ये

ब्रॉडकास्ट होता है डेन हाग शहर से। एक शहर है जो हॉलैंड देश में स्थित है। एक शहर जहां हमारे हिंदुत्व काफी तादाद में रहते हैं। एक शहर है जहां आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा यह सब प्राप्त होगा।

सुना लो, ये फिल्म जो पिक्चराइज किया गया 1960 में ब्लैक एंड व्हाइट पे उस समय पे हो रहे थे। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 1960 में बनाया गया। प्रोड्यूस बाय एस आर बागर। और कहते हैं कि रिटन एंड डायरेक्ट बाय किशोर साहू। सुनने वाला हमारे कार्यक्रम जो सुन रहे हैं श्रीमती अहिल्या जी कैंपनार लेलीस्ताद से। उन्होंने फोन कर दिया और अपना जो पुराने बातें का जिक्र किया। बातें का शिकर किया कि आज से कुछ 40 साल से भी ज्यादा वो सुरीनाम गए थे अपने बच्चों के साथ। और कहते हैं कि उनके बहन के पास रहते थे। कहा कि हमें इस बात को ख्याल आ गया और हमने अपना कसैत बांज जो है और जल्दी से निकाल कर हमें भी सुना दिया। कि कहने के तात्पर्य यह है, अजीब दासता हूं मैं, शुरू और कहां खत्म होने वाला है ये हम नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये ख्याल आ गया कि जब मेरा 30 साल का सालगर था तो हमारे बहन ने खास फरमाइश चलवाए थे सुरीनाम में। गीत आज तक उन्होंने अपने टेप पे संभाल करके

दोस्तों सुनने वालों, अगर आपके ओर से कुछ संदेश है तो जरूर आप हमसे संपर्क कीजिए, क्योंकि श्रीमती अहिल्या जी के लिए तो एक सुंदर सा गीत जो उस समय उनके लिए खास फरमाइश द्वारा चलाया गया था, वो हम कोशिश करेंगे रखने के लिए।

जिंदगी के सफर एक ऐसा सफर जो श्रीमती अहिल्या जी कैंपनार लेलिस्ताद से अपना कसत भंज हमें सुनाई। अभी हमारे जीवन में एक चीज तो तय है, ये अवश्य तय है कि बुढ़ापा आता है तो ये दर्शाता है कि दुनिया से अलग होने का समय आ गया है। क्योंकि कहते हैं अजीब दासता है ये, ये भी सिखा जाते हैं कि सब अपेक्षा करते हैं कि परिवार के लोग भी साथ छोड़ देते हैं।

इससे पहले कि दुनिया आपका साथ छोड़े, गौर करना कि इससे पहले कि दुनिया आपका साथ छोड़े, आप एकमात्र परमात्मा को अपना साथ बना ले।

का बात सुनना अच्छा होता है कहते हैं कि उसे ही जपो और उसे ही भजो।

जिंदगी के सफर कैसे गुजर जाते हैं, आपकी कसम फिल्म से निकाला गया है वो गीत।

पर किसी ने अच्छे कहा है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है।

ये दास्ता है ये। कहते हैं कि दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब। यानी कि het gewichtigste woord, ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का पड़ जाता है।

0: जाता है
1: क्योंकि एक पल में ये आगे निकल जाता है। सुनो लो, हम एक और सुंदर सा गीत आपके लिए चुन करके रखे हैं, क्यों ना हम उसे सुन लेते हैं।

आगे बढ़ने के लिए भी कुछ कुछ तो करना पड़ता है। कहते कि मेहनत करो तो धन बने, मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम। मीठी बोलो तो पहचान बने, और इज्जत करो तो नाम।

जीवन का सृजन और पालन करना हमारे कर्तव्य होते हैं। यहाँ तक भी कहा जाता कि सत्य ज्ञान और अनुशासन के मार्ग पर चले

मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ सोचे होंगे।

जियो अपने आजादी से, समय का काम है गुजर जाना, कुछ पल संभाल कर जी लिया करो।

यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ। कहते कि यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण हो तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ।

कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि किनारा ना मिला, किनारा मिलता ही नहीं। और इस पे कहा गया है कि किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को दुबा कर कभी मत तैरो।

किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह सकते हो, लेकिन फिर आपको अपने किए गए कर्मों का भुगतना होगा। और ये भुगतना जो कहे गए है, कुछ ख्याल भी आता है, क्योंकि सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। और ये जो भरोसा और विश्वास होगा, भरोसा और विश्वास होगा तो सभी अपने ही लगेंगे। और कहते हैं ना कि शंका और अविश्वास करोगे अगर आप शंका और अविश्वास करोगे तो अपने भी पराये ही लगेंगे।

कहती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आना भी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि किसने चढ़ते वक्त धक्का लगाया और किसने उतरते वक्त।

wishing you a day full fun and pleasure. Have a wonderful day.

और इस बात पे ध्यान देना कि अजीब दासता कहां शुरू और कहां खत्म, शुरुआत तो शायद हम रजिस्टर कर चुके हैं, पर कहां खत्म होगा

ये ना मालूम होते हैं। और सुनो लो, इस बात पे हम जरूर ध्यान दे कि हद से ज्यादा विश्वास आपको धोखा देगा और हद से ज्यादा प्रेम सबको कष्ट देगा।

शायद आपने सुना नहीं होंगे। हद से ज्यादा विश्वास आपको धोखा देगा और हद से ज्यादा प्रेम आपको कष्ट देगा। यहां तक हम आपके साथ जुड़े रहे।

जिंदगी कैसी है पहेली हाय। इस बार कसमें वादे प्यार वफा फिल्म का नाम

भी

समय के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, समय के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, क्योंकि दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, और खुशी के बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए वक्त मत गंवाओ।

यार मेरी जिंदगी। फिल्म का नाम ज़मीर, फिल्म समीर से ये सुंदर सा गीत हमने यहाँ पर आपके लिए पेश कर दी है। मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है। घर बैठे सपने देखने से कुछ नहीं होता, घर बैठे सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। इस बार सुनेंगे चलत मुसाफिर, मोहे ले लिए। फिल्म का नाम तेरी कसम, नहीं नहीं तीसरी कसम होना चाहिए।

कितने कमाल के साज और संगीत पर हमने सुंदर सा गीत सुने और फिल्म का नाम दिल ही तो है जो, और इस बार हम सुनेंगे झनक झनक तोरी पायलिया।

तुझ बिन जीवन कैसा जीवन, क्या दर्द भरी बयान इसमें हमने सुने हैं। फिल्म का नाम बावर्ची, 1927 तक में ये पिक्चराइज किया गया फिल्म है। शीशा कमज़ोर होते हैं, शीशा यानी कि आईना कमज़ोर बहुत होते हैं, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमेशा खुश रहा करो, हमेशा खुश रहा करो, ये सोच कर कि इस दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान और लोग भी हैं।

क्यों ना कैसे मैंने रहने बिताई, मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का नाम।

ना चाहते हुए भी कुछ राहों से गुजरना पड़ता है, ना चाहते हुए भी कुछ राहों से गुजरना पड़ता है, ना चाहते हुए भी अपनों के लिए खुद को ही भूलना पड़ता है। ये ज़िंदगी ऐसी होती है दोस्तों, ये ज़िंदगी ऐसी ही होती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सबसे बड़ी उदाहरण है हमारी सांसें, हमारी सांसें।

0: सूफी।
1: आज तू प्यार और तू प्रीत, तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। वाकई में सुनने वालों, और आपको सुनाए किशोर और लता जी ने, पराया धन फिल्म का नाम है। चादर बड़ी कीजिए ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। चार दिन की जिंदगी है, चार दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान कीजिए, ना परेशान किसी से, ना परेशान किसी को कीजिए। जी हाँ, ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए।

फिल्म का नाम है और किशोरदा के आवाज़ में हम सपने यहाँ से मिलकर सुने हैं। सुने वालों, ना रूठा किसी से कीजिए और ना झूठा वादा किसी से कीजिए, ना बिल्कुल ना करना, ना रूठा किसी से कीजिए ना झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए। सुनने वालों, कभी खुद से भी मिला कीजिए, जो सबसे कठिन काम है खुद से मिलना, अपने आप को पहचाना, अपने आप को जानो कि आप कौन हैं। हाँ सुनने वालों, तो कभी खुद से भी मिलने का, हाँ अपने आप से मिलने की भी कोशिश कीजिए।

अपनी दर्द भरी पुकार है कि तेरे बिना जिया जाए ना। आपने सुने अदनान साहनी जी के आवाज में। आपसे बता दे कि चुंगली सुना, चुंगली चुंगली रोदल स्लख प्रातो फिल्म ईमान कि चुंगली के धार इतनी तेज होती है, चुंगली के धार इतनी तेज होती है ये फिल्म स्कैरपस या जैसे स्केरमेस इतना इतना स्कैरप होते हैं कि चुंगली की धार इतनी तेज़ होती है कि खून के रिश्तों को भी अलग कर देते हैं।

की पुकार जो कह रहा है, दिल कह रहा है अदनान साहने से हमने सुने। रिश्ते कम बनाए पर उन्हें दिल से निभाए, रिश्ते कम बनाए पर उन्हें दिल से निभाए, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। सुनने वालों,

क्या खूब कहा है, सुनिए जी, कि किसी को दुख ना दो, किसी को दुख ना दो, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन हजार गुना ज्यादा होकर लौटती है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप कैसे इस पर दिमाग भर भिराते हो। सुनने वालों की किसी को दुख ना दो, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन हजार गुना ज्यादा होकर लौटती है। एक बार फिर सुनेंगे अदनान साहनी जी की आवाज में तेरी कसम।

रोमांटिसामाहिया। अदनान सानी जी से हमने सुने, जिंदगी में जिंदगी एक आईना की तरह है। आप थोड़ा सा मेरे साथ कल्पना कीजिए कि जिंदगी एक आईना की तरह है, अगर आप इसे देखकर मुस्कुराओगे तो ये भी आपको देखकर मुस्कुराएगी। ज़रा शीशे के आईना के सामने आप खड़ा होकर देखो, आप जैसे करेगा आईना वैसे ही आपके करेंगे, आपकी नक्शे ही उतारेंगे। सुने वालों, इस बार हम सुनेंगे के की आवाज़ में कि ज़रा सा

विकी के आवाज़ में हमने सुने सुने वालों एल्बम का नाम है जन्नत, और उन्हीं के आवाज़ में हम आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं, और फिल्म का नाम है गैंगस्टर अ लव स्टोरी।

क्यों? अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी, यकीन नहीं होता।

ही मेरी शब है, तू ही मेरे रब है। फिल्म का नाम है गैंगस्टर और लव स्टोरी, और सुनाए के जहाँ ने के जैसे आपको पता है तो इसी साल में इनका ध्यान हो गया है। इन अंदर तक में 2022 3 5 तक यार खलीफ टाइप पे

जी इतनी कम उम्र में और ये शख्स जो है, ये गायक जो है, तो आप नहीं रहे फिर भी हमको इतने अच्छे अच्छे से गीत जो यहाँ हमारे खातिर जो छोड़ के चले गए, जिससे हम आज इसे सुनते हैं और सुनाते भी हैं।

आशिकी है, हाँ तू आशिकी है, के और कोरस से आपने सुने। और मूवी का नाम हम देखे तो झनकार बीट्स, हाँ जी मूवी का नाम है झनकार बीट्स, और म्यूजिक कंपोजर है विशाल और शेखर जी, ये म्यूजिक कंपोज की है। हम दुनिया से अलग नहीं, हम दुनिया से अलग नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है। जिंदगी में इतना मुस्कुराओ सुने वालों, कि जिंदगी में इतना मुस्कुराओ कि जिंदगी भी देखकर मुस्कुरा उठे। क्या बात है,

सब कुछ सीखा हमने अन्ना सीखी होशियारी संजीव सचदेवा से, ये इंस्ट्रूमेंटल हम यहाँ से सुन रहे हैं। आपके लिए पेश किया जाता है अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, जो लाइव एंड डायरेक्ट आपके कानों तक, आपके घर तक लाया

कहते हैं कि कम लोग हो पर अपने हो, कम लोग हो पर अपने हो, जिंदगी तमाशा थोड़ी है कि जो भीड़ चाहिए। और जो दिल के ख़ास होते हैं, जो दिल के ख़ास होते हैं, वो हर लम्हा आपके पास होते हैं। आपके लिए यहाँ से सुनाएंगे अलीसा चुनोय जी ने कि मेड इन इंडिया।

मेड इन इंडिया सुनाई हमको अलीसा चिनाई जी ने। और यहाँ से आपके लिए एक बार फिर खूबसूरत गीत चुन कर रखी हूँ कि चांदी की साइकिल सोने के सीट क्या बात है।

जी हाँ आओ चले डार्लिंग, चलो डबल सीट। फिल्म भाभी से निकला गया है और सुनाए हमको नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल जी, और म्यूजिक डायरेक्टर इसमें है अनु मालिक जी। सुन रहे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो,

कई गाना चलने चाहते हैं, पर वही चलेगा जो यहाँ पे इशारा होगा। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। ये थोड़ा गंभीर है पर सही है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। और मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार

इस बार हम सुन रहे इंस्ट्रूमेंटल सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, वही मशहूर इंस्ट्रूमेंटल संजीव सचदेवा के आवाज में। और यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं सुनने के लिए कि मधोश दिल की धड़कन, लता और कुमार, लता मचेशकर जी और कुमार शानू की आवाज़ में।

प्यार किसी से होता है फिल्म का नाम है। हाँ, जब प्यार किसी से होता है फिल्म का नाम है। नेखंतीन अख्तर नेखंतक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है और सुनाए हमको लता जी और साथ में सोनू निगम जी, नहीं सोनू निगम ने कुमार शानू जी। जी हाँ, सुनने वालों लव इज इन द एयर। ऐसे कई दिलों हैं जो खुश में हैं और प्यार में हैं, प्यार में भरे हुए हैं। यहाँ से हम सुनेंगे हवा हवा हसन जहांगीर की आवाज़ में।

रिश्ते कभी नहीं बदलते, रिश्ते कभी न बदलते, रिश्ते निभाने वाले बदल जाते हैं। रिश्ते कभी न बदलते, रिश्ते निभाने वाले बदल जाते हैं। किसी के आने या जाने से दुनिया नहीं बदलती, बस जीने के बस जीने का अंदाज बदल जाता है। कहती हूँ कि रिश्ता उसी से रखो जो खुशी से तुम्हारा साथ दे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है।

इतने अच्छे फरमाए कि यार के हर खुशी हम सब की हर खुशी। अभी जीत जी ने सुनाए एल्बम का नाम है तेरे बिन।

कि हमें जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना, बस दूर होकर भी दूरी ना लगे इतना सा रिश्ता बनाए रखना। हर पल में हर पल का आनंद ले मेरे प्यारे सुनने वालों, हर पल का आनंद ले, खुशियाँ कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरी जीवन कम पर जाएगी। यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं सुनने के लिए पोस्टर लगाओ तो। पोस्टर लगवा दो बाजार में,

तेरे मेरे बीच कुछ आखरी नहीं है, तेरे मेरे बीच कुछ आखरी नहीं है, सिवाय सिवाय आखरी सांस के। पोस्टर लगवा दो बाजार में फिल्म का नाम अफलातून।

असलम गुंडा राज से निकाला गया ये गीत। ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको, ये बहुत गंभीर है फिर भी, कि ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको। दुनिया वालों का पसंद तो पल भर में बदल जाता।

और दोस्तों जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आपको कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनी का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तलाश है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

और बरसात में भी आग लग जाती है दोस्तों, तो ये सब तो प्यार की बातें होती है यार। तख्त में जो ज़्यादा बहार जोंग है और वो है कुमार शानू अलका यांगनी का एक गीत आपको हम सुनाते हैं। और दिलबर के बाद में हम क्या आते हैं,

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज की लय इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। वालों का सेवा में सादर सा प्रेम, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये फोन हिंदुस्तानी रेडियो है, www.danak.nl पर और इंटरनेट रेडियो और वीफी रेडियो पर।

जब आप ट्यून किए होंगे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के ट्यून पर, तो आप सबका हृदय से स्वागत है। द्वंद्र दख फिर 3 मई है, 14 तारीख मई है, आप तत्पर हैं, जो लोग तत्पर हैं एक बार फिर स्वागत है। जहां भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आप सबका स्वागत करते हुए यही कहूंगा, आज हेम फारजाक है, हेम फारजाक मनाने वालों को हम शुभकामना भेज रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो। बीमारे लाचारे तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले भैया जॉनी नंबर 1 कार्यक्रम को पेश किए और यहाँ से मैं रहूँगा करीबन 3 बजे शाम तक। इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ देंगे और आपके बारे में मवेशी सुनेंगे। ये शाम का कार्यक्रम है, तो शाम का कार्यक्रम अगर है तो हम आपको ये सुनाते हैं शाम के कार्यक्रम में।

कभी भूला कभी याद किया, सपने साजन के उस फिल्म में से निकाल कर नदीम श्रवण के साज पर हम आपको सुनाएंगे ये शानदार गीत। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और जी हाँ अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और ये है क्या प्यार में ये भी होता है कि जिस समय आप प्यार करते हो तो आपकी सांसें रुक जाती हैं। अच्छा, हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा। निर्लय आप ही लीजिए, और चलिए सोनू निगम और अलका याग्निक जी ये दोनों मिलके आपको ये बयां सुनाते हैं कि सांस रुक जाती है या नहीं।

कि तुम मेरी बाहों में हो। अलका याग्निक जी और सोनू निगम जी मिलके आपको ये शानदार द्वैत सुनाए नदीम श्रवण के साज पर, और पेश हुआ फन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म जीत में से निकाल कर हमने चलाए। उम्मीद है यह लवली गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। और ये सांस लेने का सिलसिला की बात हमने की ना, अब इसकी निर्णय आप ही लीजिए कि कैसा हुआ होगा, कैसा होना चाहिए था। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलिए फिल्म क्रिमिनल की ओर जाते हैं। फिल्म क्रिमिनल तो आपने अवश्य देखे होंगे, जी हाँ, फिल्म क्रिमिनल में से निकाल रहे हैं और ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

फिल्म क्रिमिनल में से निकाले हैं जी नहीं, सोनू निगम नहीं, कुमार सानू, कुमार सानू का ये द्वैत अलका जी के साथ हम आपको सुनाए हैं। चलिए एक गीत हमने बहुत प्लानिंग में रखे हैं और वो गीत है कि प्रेम प्यार मोहब्बत में कितनी हसरत होती, कितनी खुशी होती है, कितनी खुशियाँ लोगों को मिलता है, कहाँ तक सच है कहाँ लेके झूठ है, ये दोनों साहिबान आपको मिलके सुनाएंगे, यानी कि कुमार सानू और साधना सरगम, ये दोनों इसके बारे में आपको सुनाएंगे। बस सुनिए।

साधना सरगम के साथ। जी हाँ, साधना सरगम के साथ कुमार सानू आपको सुनाए नदीम श्रवण की लिखी हुई गीत, नहीं बजाई हुई गीत, समीर की लिखी हुई गीत। जी समीर की लिखी हुई गीत और नदीम श्रवण ने बजाए हैं। चलिए कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं, आप चाहे जहाँ भी होंगे धरती पर, प्रेम प्यार मोहब्बत तो हमेशा होता है, चाहे धरती पर जहाँ भी होंगे। तो यही कहानी अलका याग्निक जी और कुमार सानू मिलके दोनों आपको सुना रहे हैं। बस ध्यान से सुनिए।

हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है, ये प्यार मोहब्बत की दास्तां आपने सुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। लेकिन किशोर कुमार जी ये कह रहा है, आपने तो दिल के बातें की हैं, लेकिन मैं दिल से तारीफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही तरफ का है। किशोर कुमार जी आपको सुना रहे हैं, सुना बस इस तरह से आ रहा है एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी, आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए इस तरह से। गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा यहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन किशोर कुमार जी भी तारीफ़ करने से चूकता नहीं है, तारीफ़ ही तारीफ़ लीजिए। एवरग्रीन किशोर कुमार, एक बार फिर से तारीफ़ की तारीफ़, तारीफ़ ही तारीफ़।

यस, आपने किशोर कुमार जी की तारीफ सुनी ना, फिल्म जंगल में मंगल में से निकाल कर, हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, फिल्म का नाम है जंगल में मंगल, उसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। प्रेम प्यार मोहब्बत में कसमें भी खाते हैं, जी हाँ, पता नहीं आप कभी कसम खाए होंगे या नहीं, बस इसका निर्णय आप ही लीजिए, या बसलेस आप ही कीजिए, मतलब लीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ ये कसम खाने की सिलसिला।

वाह क्या बात है, अलका जी और उदित नारायण मिलके ये द्वैत आपको सुनाए हैं, ये कस्में खाने की बातचीत। तो मुकेश जी कह रहा है कि उन्हें तो थोड़ा डर लग रहा है, प्रेम प्यार मोहब्बत में मुकेश थोड़ा चंट है, तो वो कह रहा है और क्या कह रहा है, चलिए हम आपको सुनाते हैं।

मुझे रात दिन ये ख्याल है, फिल्म उमर कैद में से निकाले हैं। नेकतीन एन सस्तिक का ये गीत इकबाल कुरैशी के साज पर हमने पेश किया ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। लेकिन मैथी मुकेश जी के बाद हम ये गीत और आपको सुनाएंगे। जी हाँ, विज्ञापन से पहले चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

बप्पी लहरी, जी हाँ बप्पी लहरी की साज पर बप्पी लहरी खुद फिल्म सत्यमेव जयते के निकाल कर ये गीत हम आपको सुना है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। क्या ख्याल अगर मैं आपको ये सुनाऊँ?

बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत, जी हाँ अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, अगला गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ और वो ये है, ये धमाकेदार गीत।

हमारा फसाना मिट न गए मिट नहीं सकेगा ज़माना। और अभिजीत जी और अलका जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत जो हमने पेश की और फरफान हिंदुस्तानी रेडियो, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। जी हाँ, और प्रोग्राम में हमने रखे हैं देखूं तो बाबुल सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल। चलो सुनते हैं। हाँ

वाह क्या गीत है, हम आपको सुनाए शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। जैसे मैंने कहा, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो। फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम का। जी हाँ, अगर आपने प्रेम की है तो ढाई अक्षर

लंबा था तो छोटा कर दिए शिव हरि के साथ पर। और ये शिव हरि यही दोनों ने फिल्म क्या नाम है दिमाग से निकल गया अभी था अच्छा अच्छा अभी हाँ फिल्म सिलसिला में ये दोनों भी साज बजाए थे। चलिए उन्हीं की साज पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

तू मेरे सामने या लता जी और उदित नारायण मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये। जी हाँ, इस तरह से आ रहा है, क्या ख्याल है? मेरी कुमार सानू और अलका याग्निक फिल्म बाजीगर में

फिल्म बाजीगर में से निकाले ये टाइटल सॉन्ग पेश किया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए। प्रेम प्यार की मोहब्बत की बातें, दूर जाने की बातें, बुलाने की बातें, बहुत सारी बातें हो चुकी प्रेम प्यार मोहब्बत में। लीजिए मैं कपड़ों की बात करूँगा तो आप सोच रहे होंगे अरे गंगा क्या हुआ तुम्हें बुखार लगा। जी नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ थोड़ा गला में खराश है लेकिन ठीक है। चलिए मैं कपड़ों की बातें कर रहा हूँ, अगर जब कपड़ों की बातें हुई तो क्या ख्याल है।

0: जी क्या बात है, सुनिधि चौहान, सुनिधि चौहान आपको सुनाए हैं। चाहे जाए दिल्ली चाहे आगरा, नहीं करना झगड़ा क्योंकि मिलेगा घाघरा, तो क्या ख्याल है। चलिए अगला गीत, अगला गीत हम चलाने वाले हैं, चलते हैं इस तरह से, सुनिए। ये भी एक धमाकेदार गीत है।
1: हाय हाय

वाह क्या बात है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। बिहार लूटने के बाद क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊँ?

0: מכת הורים. תן לי כמה בדויק, כמה בנדור בסלון על הפסח.
1: अच्छा तो ये वाक्य आपने सुने ना जब पड़ोसी के चूल्हे में आग लगी ले भाई ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है देखा जाए फिल्म जीत का, फिल्म जीत में से निकाले हैं, चलो सुनते हैं ये गीत।

कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, आप थोड़ी रेस्ट कर लिए होंगे यानी थोड़े आराम कर लिए होंगे, अगर आराम कर लिए हैं तो लीजिए, हम आपको फिर एक बार स्पोर्ट्स हॉल से दूर रखते हैं ना, इस तरह से सुनिए।

बदले में कुछ भी दे दे भाई, यहाँ चिकनी चमेली हम आपको सुनाए फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और चलो ये हो जाए इस तरह से।

फिल्म चाहत में से निकाले हैं अलका याग्निक जी और विनोद राठौर, ये दोनों मिलके आपको सुनाई हैं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले इस तरह से आ रहा है, बस

बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। जी हाँ, आरती बर्मन और किशोर कुमार जी और आशा जी, ये दोनों मिलके आपको सुनाएं शाम के कार्यक्रम में।

का बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। चलिए हम आपको सुनाएं रफ़ी साहब की आवाज़ में वो शानदार गीत। चलिए हम पेश कर रहे हैं हम क्या ख्याल है, ये शानदार गीत सुनिए।

कितना प्यारा चेहरा जिस पे हम मरते हैं, अलका जी और उदित नारायण जी मिलके आपको सुनाई ये शानदार गीत शाम के प्रोग्राम में। और देखूँ तो भैया चांद रघुनाथ अल्फा नंदरा इनके रहने वाला और उनकी धर्मपत्नी खिसला जी दोनों कार्यक्रम सुन रहे हैं। भैया चांद रघुनाथ और खिसला जी को आप दोनों की बहुत बहुत दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया।

हाँ बस तुम रहते हो, अभिजीत और अलका याग्निक मिलके आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, ये लवली गीत के ड्रामा आपको बताया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

अरे काश के अब होश में हम आने ना पाए। कुमार सानू जतिन ललित के साज पर ये शानदार गीत हमने पेश किए। फिल्म है कभी हाँ कभी ना, कभी ना कभी हाँ, उल्टा भी बोलिए सीधा भी बोलिए, एक ही बात हुई कभी हाँ कभी ना में से निकाले हैं। चलिए कुछ समय अभी बाकी है तो हम क्या आपको ये सुनाएं।

लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि करीबन 6 मिनट बाकी है 3 बजने में 10 मिनट 4 3 और ये लाइव कार्यक्रम पेश हुआ। ये लाइव कार्यक्रम दनहाक शहर से।

आशा उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और तारकीय भैया चारों घना तो हिसला जी आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला रविवार को, जी हाँ रविवार के रात्रि को 8 बजे गीत गजल लेकर एक बार फिर भैया यूसुफ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे बात आप सुनोगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद बाकी के कार्यक्रम हमारे सहयोगी मिलके आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए एक बार फिर, मैं आपसे मिल रहा हूँ संध्या को, आप सबको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है।

मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज़ है और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती है दोस्तों। और गलतियाँ तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी बेमिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों। मुझे नींद न आए, आपको आते हैं, आपको क्या आते हैं, अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कोई शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं, और ये दर्द की बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोई पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं, आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज ही थे, जब तुम मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेर आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मेंस रोकेर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

हम चाहते हैं सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों की कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे। प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए। और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोक लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं जो लोग कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है, जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहां पर बैठ जाता है और बैठ के और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहां पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों, और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हुई के भैया ये हंसते हुए सिर्फ प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, नजरे करम मुझे पर इतना न कर, मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इश्क के जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेस्टमैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते हैं। अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

और दोस्तों टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपके तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है उससे बचना।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल गए लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

देश है मेरा और ऐसा देश है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है। चाहे आप भारत में हो या सूरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है। चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सातो जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिल वाला। कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को गाते हैं।

सुनने वालों, सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म में भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जा है, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सवार। आओ सुना जाए।

बस पालकी में होके और सवार चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बाहर प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जो आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जो किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवाननी और एक तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ऋषि कपूर देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी। फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चान कोई दीवाना है और ये चान कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेख होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और सबीर कुमार का यह गीत है जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और देविया भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

दोस्तों, और ये गीत क्या होगा दोस्तों? ये कुछ प्यार भरी गीत है और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

और दोस्तों ऑनली लवर्स के लिए हम कुछ नया गीत आज हम चलाते हैं। हम चलते हैं एक और गीत की ओर और वो है फिर भी प्यार करने वालों के लिए कि बिली बिली की ओर हम जाते हैं।

for the Lovers के लिए आज कुछ नया गीत हम आप लोग को सुनाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं ओक एंड रोमांटिक सोफा यार नहीं तक भी एक दो को हम सुनाएंगे और बेस्ट लॉयस्टर लाइफ में प्रोग्राम लॉयस्टर की ओर नहीं लेकिन नीखन तक का सॉन्ग है जो और फिर से इसको गाया गए है, आओ सुना जाए।

और ऐसा ही लगता है जब किसी से प्यार हो जाता है तो हमारे यारो ऐसा ही होता है।

और चल चले झील के उस पार। और नाइटिंगेल लता जी का गाया हुआ सॉन्ग है और फिल्म के नाम है झील के उस पार। और नाइटिंगेल लता जी, धर्मेंद्र मुमताज इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों

जो है, और यह फिल्म का नाम है, फिल्म के नाम है मेरे ख्याल से पहचान। और आओ मिलकर सुना जाए ये क्या गाते हैं।

और पैसे की पहचान यहाँ, और इंसान की कोई कीमत नहीं है, और बच के निकल जा इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं है। और ये गीत जो हम चलाते हैं वो है राजकुमारी गजराज हैं, ये गीत है माइती मुकेश, इस गीत को गाए है, आओ मिलकर सुना जाए, चल अकेला चल अकेला।

जी हाँ लता जी, मैं तो मुकेश, मैं तो मुकेश और लता जी मिल के आपको सुनाए फिल्म फिल्म मैं और मेरा भाई में अर्जुन के साज पर, अर्जुन के साज पर ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए बदलाव के तौर पर हम आपको ये सुनाते हैं यहाँ, चलो सुनते हैं इस तरह से बदलाव के तौर पर आ रहा है ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

वाह क्या फीलिंग है, इतनी फीलिंग से पहचान लेंगे, वाह क्या बात है। चलिए नए पुराने गीतों के संगम में हम पेश कर रहे हैं, आपको सुना रहे हैं रफ़ी साहब की ये गीत, क्या ख्याल है?

मैंने चांद देखा है, ये शानदार गीत चला फान हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में है। क्या ख्याल है, हवा हवाई

आइए, आप सुन रहे थे कृष्णमूर्ति, कविता कृष्णमूर्ति जी आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत फिल्म मिस्टर इंडिया में से निकाल कर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जो लोग चुन की मीटर पर, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए, क्या ख्याल अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं, आप भी हैं मैं भी हूँ, बस सुन लीजिएगा।

0: वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हार्दिक से नमस्कार करता हूँ। फाउन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए हम सब फिर उपस्थित हो गए स्टूडियो में और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बबली जी भी, जो अपना एंट्री डाल रहे हैं, और अभी हमारे और कोलेखा जो अभी स्टूडियो तलक नहीं पहुंच पाए हैं, पर धीरे धीरे इस ओर आ रहा है। हम कार्यक्रम को जो यहाँ से प्रारंभ करते हैं, तो बबली जी अपना एंट्री करते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
1: आशाओं भरा सवेरा है, उम्मीदों का बसेरा है, सोच लो तो शुरुआत अच्छी है, नहीं तो वही अंधेरा है। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
0: सुनने वालों, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है, और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है बबली जी, हर सप्ताह वही गीत हम सब रखते हैं, जो तेरा राम जी करे बेड़ा पार,

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। सुने वालों, ये सुंदर सा गीत जो हम सब हर सप्ताह की तरह कार्यक्रम में रखते हैं, इसमें कुछ संदेश है, एक ऐसा संदेश है जिसे हम जो उन्हें ध्यान से सुने तभी उनका और उन्हें हम शायद तभी समझ पाएंगे। हम आज का विषय अभी रखने वाले हैं, ये सुंदर सा कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है डेन हाग शहर हॉलैंड देश, और जो 188 देशों तक सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम में आज कुछ संदेश हम सब रखने वाले हैं आपके लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कोलेखा साथी शिव जी, जो भी स्टूडियो त्वे में उपस्थित हो गए हैं। हमारे साथ जो हमारे कोलेखा साथी उपस्थित हो गए, शिव जी आपको स्वागत है।
1: जी हाँ, नमस्कार सबको के।

0: गुलजार जी ने बड़ा अच्छा से लिखा है कि कभी तानों में कटेगी तो कभी तारीकों में, ये जिंदगी है प्यारो, पल पल घटेगी। गुलजार जी ने बड़ा सुंदर अपना और जो संदेश रखे तो बबली जी इस पे आप क्या सुनाने वाले हैं?
1: मैं तो सुनाने वाली हूँ कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं,
0: तो जरूर हम सबको सुनाइए।
1: हाँ जी जरूर। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, सुबह की सैर में कभी चक्कर खा जाते हैं, सारे मोहल्ले को पता है पर हमसे छुपाते हैं, दिन प्रतिदिन अपनी खुराक घटाते हैं और तबीयत ठीक होने की बात फ़ोन पे बताते हैं, ढीले हो गए कपड़ों को टाइट करवाते हैं और देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, किसी के देहांत की खबर सुनकर घबराते हैं और अपने परहेजों की संख्या बढ़ाते हैं, हमारे मोटापे पर हिदायतों के ढेर लगाते हैं, रोज़ की वर्जिश के फ़ायदे गिनाते हैं, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत हर दफ़े बताते हैं, देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, हर साल बड़े शौक से अपने बैंक जाते हैं, अपने ज़िंदा होने का सबूत देकर हर्षाते हैं, जरा सी बड़ी पेंशन पर फूले नहीं समाते हैं और फिक्स डिपॉजिट रिनो कराते जाते हैं, खुद के लिए नहीं हमारे लिए ही बचाते हैं, देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते

0: करते हैं। हर त्यौहार पर हमारे आने की बाट देखते हैं। अपने पुराने घर को नई दुल्हन सा चमकाते हैं। हमारी पसंदीदा चीज़ों के ढेर लगाते हैं। हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी करने के लिए माँ रसोई और पापा बाज़ार दौड़े चले जाते हैं। पोते पोतियों से मिलने को कितने आंसू टपकाते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। चीज़ें रख के अब अक्सर भूल जाते हैं। फिर उन्हें ढूंढने में सारा घर सर पे उठाते हैं और एक दूसरे को बात बात में हड़काते हैं, पर एक दूजे से अलग भी नहीं रह पाते हैं। एक ही किस्से को बार बार दोहराते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। चश्मे से भी अब ठीक से नहीं देख पाते हैं। बीमारी में दवा लेने में नखरे दिखाते हैं। एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट बताते हैं और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक की हिरट लगाते हैं। ज़रूरी ऑपरेशन को भी और आगे टलवाते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। उड़द की दाल अब नहीं पचा पाते हैं। लौकी तुरई और धूली मूंग दाल ही अधिकतर खाते हैं। दांतों में अटके खाने को तीली से खुजलाते हैं, पर डेंटिस्ट के पास जाने से कतराते हैं। काम चल तो रहा है कि ही धुन लगाते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं।
1: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने, जैसे कि बबली जी ने सुनाए कि देखते ही देखते जवान मां बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो बूढ़ा होने में कौन कौन पड़ाव पार करना पड़ता है, जैसे कि हमारे शिव जी जो अपना समय विपरीत करते हैं, सब इस प्रकार के फ्राइवेल खर्च काम में हेल एक्टिव, हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे। फिल्म का नाम धर्म करम, एक दिन बिक जाएगी माटी के मोल। और माटी किसको कहते हैं?
0: मेरा ख्याल एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। कि जो हम इंसान आए हैं सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, और जो हमारी ये बोल है, जो हम बातचीत करते हैं, हमारा व्यवहार, वही इस दुनिया में रह जाएगा, और बाद में लोग इसी से हमें लोग याद रखेंगे।
1: तो चले हम वो सुंदर गीत की ओर बढ़ेंगे। एक दिन बिक जाएंगे

0: ये सुंदर गीत निकाला गया फिल्म धर्म कर्म से, और ये सुंदर गीत को लेकर के बबली जी का जो संदेश था, तो बबली जी संदेश में से कुछ जो अभी आपने रखे उस पे कुछ और कहने वाले आप?
1: हाँ जी, हर त्यौहार पर हमारे आने की बाट देखते हैं, अपने पुराने घर को नई दुल्हन सा चमकाते हैं, हमारी पसंदीदा चीज़ों के ढेर लगाते हैं, हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी करने के लिए माँ रसोई और पापा बाजार दौड़े चले जाते हैं।
0: तो ऐसा, क्योंकि हम लोग भी देखिए, हम लोग भी सेवा के काम करते हैं और कहीं कहीं हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं, जहाँ जैसे कि औदर हाउस में, तो कहते कि लड़कुआ अभी बैल करे रहा झूठे के, शायद कहते होंगे ना शिव जी?
2: हाँ हाँ, हम सोची लावंत लड़कन तो इकला कब ना आवे है, बहुत दूर दूर है। हाँ तो ऐसे है, ये है कि वो अब बूढ़ी लगन अकेले अपन रहे बितावे है, वही में स्ट्रेस सब रकम के चीज़ होते हैं। जौन आदमी अपन घरे रहे है, जौन फॉर प्ले खास में, वो सब तो एक को बुन नमाए नहीं करे।
0: अब निकलने में ऐसा क्यों है कि अब नहीं निकलना चाहते वो?
2: कुछ पता ना है। देखो, हम हर शुक्रवार के मैं एक लोप कोच करते हैं, तो हम लोग हम उसे बोल लें कल ही आए जहाँ रहनी, तो हम बोल लें ग्रुप में कि हम 10 बजे हम लोग ज्याला चले। बोले इतना जल्दी इतना फ्रूक, हम तो घर से 3-4 आँख निकली ला जैसे हम करोड़नीत काम पर जाइला। तो जो हमें जब फ्राइवेल काम न रहे तो अपने अपने इन्वेस्टर करें अपन खातिन, तो हम जाइला योगा करें, सब कोई सोचे कि हम जाइला काम पर। अब वे फ्लैट में सब कोई सूते वंत, हम एक और सीढ़ी और फ्लैट में रहिला। जो इस तब आदमी लगन बोले 10 बजे, अभी बोले बड़ा और बोले बड़ा फ्रूक है, और न जाने हैं सवेरे फ्रूक अपन, तू अपन काम कर लेता और अच्छा है न। तो हमारे देखे में ऐसे है।
0: जैसे कि आप सुन रहे हैं कि श्रीमान शिव जी सुबह जल्दी से उठते हैं, जबकि कब से उनका पेंशन चल रहा है, पर अपना शरीर के अपने इस सुंदर काया को जो प्राप्त हुआ है उस अंतर्गत सुबह जल्दी उठते हैं। इसमें ऐसा क्यों शिव जी?
2: ऐसा किया कि देखो सब कोई देखो, हम 2 साल से हमें डॉक्टर नहीं देखा। अबे आज मैं आप ही का अपन क्यूरिंग खून निकलवाए, सब चीज़ चेक किया तो बोले सब चीज़ ठीक है। तो एमन तो हमारा देखे में एमन खाली भलाई भलाई है, बाकी आदमी लोगन जब उन घर से ना माए निकले। अबे आज हम एक आदमी का फिर अभी फ़ोन कर लें, तब बोली तो मृत्यु में आवल करिए, तो बोले अच्छा, बोले एक बरिस से वो के हम कितना दिन से बोला, सब आदमी बोले अच्छा यानिवारी से यानिवारी हो जी, तब बेकार हुई बोली कि एकवा बरी साहब है। तो यही रकम आदमी लोग ना न जाने हम लोग के वेर जौन यहाँ पर है, यही वेरवा में चाहिए बहरे निकले के कहें के हम लोग का वेर बहुत अच्छा है कि ठंडा में तू चल सके, बहुत अच्छा बात है। सरनाम में नहीं गर्म देश में जाइए तो 10 मीटर चलिए थक जाइए, न मन करी चले के। जैसे यहाँ पर हम लोग के चाहे खबराई माँ के करे के बहरे चाहे निकले के, वो मन भी वो हवा से और घाम से भी विटामिन दे अभी हो ऑटोमेटिक, तो और बवेखेंगे अभी बहुत बड़ा ग्राइक है। हाँ
0: तो शिव जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि रोज आप योगा भी कुछ करते हैं?
2: हाँ, जैसे सवेरे जब मैं काम न रहे तो चल जिला योगा पर, तो हम वो कर बाद हम अपन करके जाइला। बाकी देखो आज हम चल गए फुटसल बैंक में, तो हुआ पर हम लोग ऐसे क्वार्ट फोर्थ वालफ लेक हम लोग 1100 पैकेट हम लोग फिल कर चुके। हम आज खाली ब्लैक मकरेल फिल करे थे, इन छोट छोट वाला दुई को कोई चावल कोई खरुंत कोई ब्रेड, तो ऐसे बाकी भर जाए तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जाए।
0: तो दोस्तों, ये संदेश है कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। हमें यहाँ एक मैसेज भेजा गया और मैसेज ये है कि पाने को कुछ नहीं, पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों चिंता करते हो, इससे सिर्फ खूबसूरती घटती है, ये जिंदगी है प्यारो, पल पल घटते हैं, तो हमारा समय जो कहा जाता है कि पल पल घटते हैं, तो बबली जी इस पे जैसे कि आज का संदेश में सुंदर संदेश आपने सुनाए कि अभी आपने कहा कि बुढ़ापा आने पे लोग अपने दांतों को दांत में पीरा होते हुए डॉक्टर जाने का डर लगता ना।
1: हाँ जी, माँ बाप जो बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं।
0: और दोस्तों अभी इसमें कुछ और संदेश हम सब रखने वाले हैं, पर बबली जी आज हमारे खोजी सेना जो है ना,
1: हाँ जी,
0: हमारे लिए ये भी लिखे हुए है कि ना कि सिर्फ हमें जो हमारे अवस्था बीत रहा है, हमारे पल पल का और जीना जो आगे बढ़ रहा है, पर जैसे कि हम कुछ तीर्थ स्थान आदि पे जाते हैं ना, तो तीर्थ स्थान आदि पे जाते हैं तो क्यों हम वहाँ जाते हैं तो अपना चप्पल आदि निकाल देते हैं, तो उसके बारे में अभी आप रखने वाले हैं जैसे कि मुझे पता है। पर उस ओर बढ़ने से पहले क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं जो इस समय जो आज का विषय है उस पे लागू करते हैं।
1: जरूर।

0: ये सुंदर सा गीत जो चलाया गया, और इसमें ये जो आज का विषय है कि हमारे विषय थोड़ा से फुर्सख्तक कहना चाहिए ना बबली जी।
1: हाँ जी,
0: क्योंकि किसी को अगर आप जल्दी से कह दिए कि बुढ़ापा आ गया तो मुसीबत हो सकता है। शिव जी जो अपने ओर से हम सबको संदेश रखते हैं कि कैसे आप और तंदुरुस्त रह सकते हैं, तो शिव जी और क्या संदेशों में संदेश और क्या है?
2: देखो, हम लोग हर शुक्रवार के हम लोग फैल शेख नंबर 20 तक से हम लोग चली ला 10 बजे, 3:30 हम लोग फरसामल होइला। जब कोई बस से आई तो बस इन 20 तक वहाँ लगे रेफाली दांसी सेंट्रम ऑफ त्रम नेख वॉल वही फरसखार दे उतर के, और आगे से हमें जब बताए दे कि आई तो हम लोग वहाँ पर अभी लंच के अभी हम लोग फरसौरख कर सकीला। तो सब कोई आ सके। देखो, हम लोग सब कोई तो बूढ़ा हो गए, बाकी हम लोग महिला खसौंत आउट वर्ड दात इस बलंग रही है ना कि खसौंत हो जाए। हम लोग तो बूढ़ा ऑटोमेटिक हो तो नकाम कुछ करे के तू अपने बूढ़ा या होइए ऐसे है। तो
0: इसमें बबली जी कुछ कहने वाले थे।
1: हाँ जी, बार बार रफू करता रहता हूँ जिंदगी की जेब, कम वक्त फिर भी निकल जाते हैं ख्वाहिशों के कुछ लम्हे। ज़िंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए ना ही किसी को कम चाहिए।
0: बबली जी, जैसे कि आपने कहा कि बार बार रुफ्त करता रहता हूँ,
1: रफू
0: रफू,
1: हाँ जी
0: बोले तो
1: रफू, जैसे कपड़ा फट जाता है उसको जब हम सिलते हैं तो उसे हिंदी में या उर्दू में रफू कहते हैं।

0: ओके निकेरी में बोले पाँच करे, ओ पाँच करे वो एंगल्स वर्ड था ना हम सोचिला ओके पाँच करे कि ओके मतलब कि ओके फिर से ना जैसे को होल है तो के फिर से सी के ओके पाँच करे
1: हाँ जी सिलाई करना
0: हाँ हाँ जी जैसे बाइसिकल के बांती में जब वो बोरो हो जाना तो ओके सब पाँच करे जैसे ना ओके प्लग करे तो वैसे निकेरी में सब ऐसे बोलता रहा
1: हाँ
0: जी।
2: तो दोस्तों जैसे कि आप भी सुन रहे हैं कि निकेरी में क्या कहते हैं, हमारे शिव जी भी सुना चुके और बबली जी जो जो भारत में जैसे कहते हैं। और अगर ये बात है बबली जी, आपने तो हम सबको ये सुनाने वाले हैं कि जैसे कि हम तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो हम सब ये तो छोटे से हम सब जानते हैं ना कि अंदर जाने पे कैसे हम लोग को जाना चाहिए ना।
0: जी हाँ
2: बबली जी, इस पे आप क्या रखने वाले हैं?
1: इसमें ये है कि जब तीर्थ स्थान में जाते हैं तो चप्पल बाहर क्यों उतारते हैं?
2: पर बबली जी तीर्थ स्थान माने तो यहाँ शिव जी आप भी इस पे जरूर गौर कीजिए, तीर्थ स्थान हम किसको कह सकते हैं?
0: होलांत में तो हम लोग बोल सकेला मंदिर में ना, मंथिया पर तो वैसा न तीर्थ स्थान न है तो मंदिर हम लोग जाए तो अपन जूता उतारी था या लाच भी कह रही मोस्के देखो दिया लोक रहा तो वहाँ पर भी जूता उतार जमा मैपुर कैथोलिक में केरकी में तो वो सब जूता ना उतारे तो वो सब के वो दूसरा रकम चले हैं।
1: वो तो हम घर पे भी जैसे मंदिर है वहाँ पर भी जूता उतारते हैं, जरूरी नहीं खाली तीर्थ स्थान पे, जो जहाँ पर तुमको धार्मिक लगता है वहाँ पर आप जूता उतार सकते हैं। घर पे भी लोग जूता उतारते हैं, घर में एक तरह का मंदिर है।
0: जी जी हम तो अपन घरे पहला आईला तो अपन जूता उतारी ला
1: हाँ जी
0: अपन हाथ धोईला तब फिर हम कुछ करीला तो हाँ वो तीर्थ स्थान है ही है।
1: हाँ जी हाँ जी।
2: बबली जी आपको तो ये है कि जरूर कहीं कुछ लिखा होगा ना, तो जैसे कि हमारी खोजी सेना ने हम सबके लिए रखे हैं तो हम सबके लिए सुनाइए।
1: हाँ जी जरूर। चप्पल बाहर क्यों उतारते हैं? मंदिर में प्रवेश नंगे पैर ही करना पड़ता है, यह नियम दुनिया के हर मंदिर में है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि मंदिर के फर्शों का निर्माण पुराने समय से अब तक इस प्रकार किया जाता है कि यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेट तरंगों का सबसे बड़ा स्रोत होती है। जब इन पर नंगे पैर चला जाता है तो अधिकतम ऊर्जा पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती है।
2: तो जैसे कि आपने कहा कि मंदिरों में और जा करके जूते उतारना पड़ता है, शिव जी कुछ कहने वाले
0: जी,
2: हैं?
0: जी हाँ, और गुरुद्वार में तो अभी कोसू बिछाई उतारे के हम देख ली ना। हाँ,
1: जी हाँ, जी।
0: एकदम
1: गुरुद्वार में तो पानी होता है।
0: हाँ, हाँ, चलो जाए के धोवे।
1: हाँ जी, कोसू उतार के पैर धो के फिर अंदर जाते
0: हैं। जी जी,
1: अब वहाँ पर नियम है सिर जरूर ढकना है।
0: हाँ जी
1: हाँ जी।
2: पर शिव जी कभी कभी ऐसे हो जाता, देखो आज के कार्यक्रम उसी ओर हम लोग ले जा रहे हैं कि अवस्था एक चीज है और जिसे हम रोक नहीं पा सकता है क्योंकि वो तो हमारा समय पल पल बीत रहा है ना।
0: हाँ, वो ऑटोमेटिक हो, कोई कुछ मन कुछ काम ना करे कि वो ऊपर वाला अपने करवावे,
2: वो नहीं रुकता
0: जी,
2: कोई कभी नहीं रुकता है
0: ना।
2: पर कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, देखो हम लोगों ने जैसे कि मंदिर आदि जाते हैं ना
0: जी।
2: तो अब जैसे कि कोई ऐसा बीमारी हो गया है जो अब स्पेशल स्कूना उन्हें पहनने पड़ता है, कुछ ऐसा स्थिति हो जाता है कि अपना जूता नहीं उतार सकते हैं, तो मंदिर आदि में ऐसा और गुरुद्वारा आदि में ऐसा अलाउड करना चाहिए कि जो जैसे कि कोई बीमार आदि कोई कुछ कारण बस अपना जूता से बंधे हुए है और उसे वो ऐसा स्थानों पे जाने का अवसर हो सकता है, मिल सकता है, या ऐसा हो गया तो आपके लिए वो दरवाज़ा बंद?
0: हम न जानी गुरुद्वार के बात, बाकी हम मंदिर में हम सोची ला कि वो प्लास्टिक है जो कि वो जूता पर पहना सके, तो सही बात है कोई कोई के वो जूता न उतरे है, वो सब कैसे बोले है वो सब अरे हैंडीकैप है गलत, तो वो सब जूता ना उतार
2: सके, कुछ कुछ टेक्निकल हो जाता
0: हाँ,
2: है
0: हाँ, तो ऊपर तो प्लास्टिक एकदम हम एक जहाँ गए तो हम बोली अब जूतवा कैसे उतारी, तो बोले प्रॉब्लम ना बोले वक्त ही हम तो कहे प्लास्टिक दे बोले प्लास्टिक को बोले पहन के बोले आओ, तो ओकर घर में हम जाते नहीं।
1: मंदिर में तो मैंने देखा नहीं, गुरुद्वारे में भी अभी भारत में नहीं देखा, लेकिन सत्संग में मैंने देखा है। हम लोग सत्संग में जाते थे, वहाँ पर जो बूढ़े लोग थे वो कुर्सी पे बैठते थे पीछे, और उन्होंने जूते पहने होते थे।
2: तो वहाँ कहने की तात्पर्य है कि हालात के
1: मुताबिक, हाँ जी,
2: हाँ सब उसी कारण प्रकार से हैंडल होता है ना।
1: हाँ जी,
2: कि जहाँ तलक हो सके तो ऐसा ना है कि रुकावट हो जाए, दरवाजा बंद हो जाए।
1: क्योंकि भारत में ये है, मंदिर अलग से लगते हैं, वहाँ पर कथा व्यास नहीं चलता, और जो सत्संग है वो अलग से चलते हैं। सत्संग में तो इतनी भीड़ होती है, तो हजार तो होते हैं, हजारों की संख्या में है।

0: जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो, कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं। तो सुनने वालों, आज के कार्यक्रम में जो हम ऐसा विषय रखे हैं और जिसमें कुछ अच्छे अच्छे बातें के साथ हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं, आज के कार्यक्रम में बबली जी हम सबको कुछ और सुनाने वाले हैं। कि बबली जी, जब आप अभी सुना चुके हैं कि क्यों हम चप्पल उतारते हैं तीर्थ स्थानों यानी कि कोई भी और अच्छा स्थानों पे, तो अपना चप्पल निकाल कर और बाहर रख देते हो। क्योंकि ऐसे एक बार हुआ ना, मैं भारत देश गए थे अपने मित्रों के साथ और गए पंजाब।
1: हाँ जी,
0: पंजाब जहाँ जो गोल्डन टेंपल कहते हैं ना।
1: हाँ जी, स्वर्ण मंदिर,
0: अमृतसर। हाँ, हाँ जी। तो वहाँ गया और वहाँ पर भी चप्पल निकाल करके रखना पड़ता है ना।
1: हाँ जी।
0: और चप्पल निकाल करके रख दिए हमने और हम सब फिर प्रवेश किए। वो जो गोल्डन टेंपल है उसका तो जो काफी बड़ा है, उसका परिक्रमा आदि हम सब किए और वहाँ से निकले। तो जब निकले तो सोचा चलो अपना चप्पल ले लेते हैं, पर चप्पल गया लेने को तो वो एक व्यक्ति जहाँ पर, क्योंकि एक ऐसा बना हुआ ना जहाँ पर आप चप्पल जाकर दे, वो सेवा कहते हैं वहाँ।
1: हाँ जी।
0: तो लोग कितने तादाद में हैं और
1: चप्पल घर,
0: चप्पल घर कहते हैं।
1: हाँ जी।
0: पर शिव जी, उसमें हमें लग रहा कि लोकस्थिक बहुत ऊंचा स्थान पे,
2: बहुत वो बहुत बड़का सेवा है ना।
0: क्योंकि नहीं, पर कहने के तात्पर्य यह है क्योंकि आप वहां पर 2000 या 3000 चप्पल नहीं, जूते नहीं, काफी हजारों में एक ही दाइन में, तो इतनी ज्यादा तादाद में होने पर जिस प्रकार से बनाया गया है, तो आपका चप्पल निकाल कर समय पे दे देते।
1: हाँ। नंबर मिलता है,
2: नंबर देवे तो नंबरवा से उ सब कोरेस्पोंडेर करे तो वैसे दे दे। आधा खाली जूतवा देवे है, ओके चमकाए के सफा करके देवे।
0: वही तो मैं कहने वाला था कि हमने गया तो अभी हम निकल रहे थे तो हमारे बाकी के और साथियों लोगों ने अपने अपने चप्पल पा गए, पर मेरा चप्पल नहीं आ रहा था। वो व्यक्ति जो वहाँ बाली पे खड़े थे ना,
1: हाँ जी,
0: तो वो कह रहे थे कि अभी दो मलिट अगोल लो। तो हमें लगा कि दो मलिट इंडिया का, सूरीनाम का या हॉलैंड का, इसमें थोड़ा से और सोचने वाला बात हो जाता है ना। क्योंकि इंडिया का दो मलिट तो कभी कभी दो दिन लग सकता है, सूरीनाम वाला तो दो मलिट शायद कुछ और ज्यादा, हॉलैंड में तो दो मलिट तो दो ही मलिट होते हैं। तो हमें लगा कि ये चप्पल नहीं मिलने वाले हैं। हमने सोचा कि चलो बाहर खरीद लेंगे दूसरा वाला। तो वो व्यक्ति ने देखा, हमें इशारा किया, बोले इस तरफ देखो। तो हमने घूम करके जब इस तरफ देखे तो देखा वहाँ लाइन लगा हुआ है और लोग किस प्रकार से चप्पल को साफ कर रहे
1: हैं। हाँ जी,
0: लगभग 30-40 लोग एक ही चप्पल पे काम करते। तो एक जब एक ब्रश मारता तो दूसरा ब्रश मारता, तीसरा उसमें क्या कहते जो काला
1: पॉलिश
0: लगाता है, और जब वापिस आता है तो चप्पल का रंग जो गंदा था, चप्पल एकदम चमाचम। तो ये है कि सेवा जिस प्रकार से और जो गुरुद्वारा में किया जाता है, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ उस बात को देख करके। और सब चीज कुछ में खर्च नहीं होता
2: ना,
0: तो ये एक सुंदर सा संदेश। पर बबली जी, अभी आप और क्या हम सब के लिए रखने वाले हैं?
1: हाँ जी, अब मैं रखने वाली हूँ कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो दीपक के ऊपर हाथ घुमाने का वैज्ञानिक कारण।
0: दीपक के ऊपर यानी कि मंदिर में हम जाते हैं तो आरती कैसे?
1: हाँ जी, जब हम आरती लेते हैं तो आरती के ऊपर हम हाथ घुमाते हैं तो फिर आरती लेते हैं तो
0: जी ऐसा।
1: हाँ जी, तो उसका वैज्ञानिक कारण क्या है? आरती के बाद सभी लोग दिए पर या कपूर के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके बाद सिर से लगाते हैं और आंखों पर स्पर्श करते हैं। ऐसा करने से हल्के गर्म हाथों से दृष्टि इंद्रिय सक्रिय हो जाती है और बेहतर महसूस होता है।
0: तो बेहतर महसूस होता है और आरती करने से। तो दोस्तों हम क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे। गीत जो एक शायद आपने ये फिल्म देखे होंगे, फिल्म मॉडर्न इंडिया, जिसमें नरगिस और सुनील दत्त ने काम किया।
1: हाँ जी, मदर इंडिया जैसी तो कोई फिल्म दूसरी बनी नहीं। नरगिस जी को इसमें अवार्ड मिला था।
2: बहुत विशाल फिल्म, बहुत ज्ञानी फिल्म। उमन उमन शिक्षा मिले कि कैसे चाहिए रहे के, कैसे कितना दुख से तो भी वो अपन
1: बच्चों, हाँ जी, माँ एक बच्चे को कैसे पालती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।

0: ना मैं भगवान हूँ ना कोई शैतान, दुनिया जो चाहे
1: मैं तो इंसान हूँ।
0: तो शिव जी, ये गीत को देखते देखते लग रहा था कि आपका इमोशंस, आपका पुराने बातें ख्याल आ गया।
2: हाँ जरूर, हम जैसे देखिला कि वो कैसे बुल ना पुलुक करे है ना खेत जोते है, वो पहले हमारा पिताजी भी यही रकम में करत रहा। हमारा पिताजी धोती पहन के और ऐसे बुल से करत रहा। तो फिर धीरे धीरे वो एगो ट्रैक्टर की नहीं मिलता, ट्रैक्टर से कारोबार होत रहा और ऐसे होत होत अब दोस मशीन की नहीं मिलता, फिर दोस मशीन से फिर की नहीं कम्बाइन। तो इस आई तो अब सब चीज़ मशीनाल हो। इस आई तो निकेरी में अब्बे तलिक हमारे भाई के लड़कन जो है वो सब खेती करे हैं। तो इस आई तो प्लेन से छिटा है धान और कम्बाइन आई के काटे, तो ये सब चीज़ होते। बाकी ये मन खर्चा बहुत है और तो ऐसे ही सब इतना मॉडर्न हो गया।
0: बबली जी, आप भी मेरे ख्याल से पंजाब में कुछ खेती किया ना?
1: ना, मैंने खेती नहीं किया, मैं तो सबसे छोटी थी। हम अपने नानी यहाँ जाते थे तो मामा को देखते थे, फूआ यहाँ जाते थे तो फूआ और फूफा को देखते थे।
0: तो देख करके खेती हो गया क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, वो हम देखते थे कि वो लोग बैल से करते हैं, मामाओं ने बैल जोत के, कभी ऊँट से भी होती है पंजाब में, ऊँट से भी करते हैं और ट्रैक्टर से भी बाद में करने लग गए।
0: पहले हम एक बार गुजरात गए ना,
2: हाँ।
0: तो गुजरात गए तो वहाँ पर अब क्योंकि वहाँ जैसे भीड़ भाड़ दिल्ली में है, वहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, रास्ता है और खूब साफ रास्ता है, गाड़ी और चल रहा है, तो हमें अजीब से लग रहा था, ना कहीं ट्रैक्टर ना कहीं कॉम्बाइन, पर धान आदि खूब ढेर लगा हुआ था, बरसात हो चुके थे। तो हमने वो जो हमारे चाचा जी थे जो गाड़ी चला रहे थे, तो उनसे जिक्र किया कि चाचा जी, ये यहाँ पर ऐसा क्यों है कि कहीं मशीन से काम नहीं हो रहा क्या? तो चाचा ने कहा कि ना, यहाँ मशीन से काम नहीं हो रहा। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा, यहाँ पर देखो बैल है और बैल जो है, सभी बैल, जब उन्होंने इस बात को कहा ना, तो हमने उस पर और दृष्टि डाल रहे थे, तो जहाँ आगे से उस पर दृष्टि था ही नहीं, तो जहाँ भी और पास हो रहे थे तो देखो चारों बगल सफ़ेद बैल,
1: हाँ जी,
0: खूब ढेर और सभी और बैल से काम कर रहे अभी तक। अच्छा,
2: हाँ अब बेहतरी।
1: और बैल और उनके सींग आपने देखे होंगे कैसे थे, और
0: हाँ डिल, जैसे कि हम लोग का और सूरीनाम में बोला था सेबू,
2: सेबू, हाँ सेबू उन्होंने बोला था।
0: तो ऐसा ऐसा बैल, तो हमने कहा कि चाचा जी, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि सभी सफेद क्यों हैं और ऐसा क्यों है कि सभी खेती में लगा हुआ है। तो चाचा जी ने कहा कि भाई ये बात है कि इसको आपको नहीं पता कौन है? तो मैंने बोला पता होता तो पूछते क्यों ना,
2: हाँ।
0: ऐसा हमें नहीं पता था। तो उन्होंने कहा ये शिवजी का, पर गुजराती मुझे नहीं आता, तो शिवजी का वो ऐसा कहा कि बैल पर गुजराती में, तो हमने समझा नहीं। तो मैं उससे ये प्रश्न रखा कि ये तो बताइए चाचा जी कि आप ये, मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये शिवजी के वो है। तो मैंने कहा शिव जी का वो क्या? तो जिस पे बोले वो उसका ट्रैफल करता है। तो मैंने बोला ट्रैफल करता है, तो हमने समझ गया कि वो शिव जी का वाहन कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये वही है, शिव जी का वाहन है। और वो ऐसा हुआ कि एक बार शिव जी ने और नंदेश्वर जो उनका वाहन है ना बैल, नंदेश्वर से कहा कि जाओ पृथ्वी पे जो मृत्यु लोक है ना, वहां पर मेरे लिए एक संदेश छोड़ाओ। तो नंदेश्वर को लगा कि चलो आज भगवान, हमने सोचा वैसे तो ये नारद का काम है और देवताओं का काम है, पर उन्होंने बड़ा खुशी से सोचा कि आज शिवजी हमें कैसे चुन लिया ये काम के लिए ना। तो उन्होंने कहा कि शिवजी अवश्य हम जा रहे हैं और जा करके आपका संदेश सुनाएंगे। तो शिवजी ने कहा कि ठीक से सुन लो, जाओ पृथ्वी लोक में और सभी से ये कहो कि एक दिन में जो दो बार नहाना है और एक बार खाना है, समझा शिव जी?
2: जी,
0: कि दो बार नहाना है एक बार खाना है, ना कि तीन बार, पर दो बार नहाना है एक बार खाना, ये हमारे मनुष्य शरीर के लिए। तो नंदेश्वर महाराज ने बड़ा खुशी से और मटक मटक के और पृथ्वी लोक पे आते हैं, और पृथ्वी लोक पे आते हैं और अपने सिर में यही और रखे हुए है कि भगवान का संदेश तो सुनाना है। तो उन्होंने कह रहा है कि दो बार नहाना है एक बार खाना है, दो बार नहाना है एक बार खाना है, दो बार नहाना है एक बार खाना है, बस ये हो गया, दो बार खाना है एक बार नहाना है।
1: पृथ्वी पे आके वो भूल गए,
0: उल्टा हो गया।
1: हाँ जी,
0: तो ये बात हुआ और जा करके और प्रभु से कहते कि प्रभु, वापस जाते ना शिव जी के पास और कहते कि शिव जी मैंने आपका संदेश सुना दिया। शिव जी जो अंतर्यामी है, उन्होंने कहा क्या संदेश सुनाया? तो उन्होंने कहा भगवान हमने सभी को सुना दिया कि दो बार खाना है एक बार नहाना। तो शिव जी ने कहा आपको कहा गया था कि एक बार खाना है दो बार नहाना है, जाओ पृथ्वी पे उतना दिन तक आप काम करो ताकि खाना दो बार के लिए हो सके। तो आज तलक हमारे सुनने वालों जो ये बात को सुन रहे हैं, जरूर गुजरात में अगर आप हो तो इस पे दृष्टि डालना, क्योंकि वहाँ सभी गाड़ी वाला ये संदेश और सुनाते हैं कि वहाँ पर जो बैल होते हैं क्यों सफ़ेद होता है और क्यों अभी तक वहाँ पर जो कार्यक्रम जो मशीनरी से और नहीं होता है, और आज तक लाखों लाखों खरौत आंताल जो वहाँ पर और लंबाव होता है अभी तक जो बैल से और किया जाता है। बबली जी, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते, तभी हम आपके संदेश की ओर बढ़े।
1: हाँ जी जरूर,
0: अगर शिव जी चाहे तो।
2: हाँ जरूर है, हाँ तनी सुना दे कुछ।
0: तो जैसे कि शिव जी कहते हैं कि तनी सुना दे कुछ, तो ऐसा एक गीत रखते हैं सुनने वालों, जिसे हम जब कोई बात बिगड़ जाए कहीं मुश्किल ना पड़ जाए।

0: ये सुंदर सा गीत जो हम सब सुने, और गीत का बोल कि जब कोई बात बिगड़ जाए ना, कोई बात बिगड़ जाए तो मुश्किल में कैसे पड़ सकते हैं। बबली जी, इस पे क्या ख्याल है आपका?
1: हाँ जी, कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तो कौन साथ देता है? भगवान ही देते हैं, हर मुश्किल में भगवान साथ देते हैं।

0: हर मुश्किल के समय पे भगवान साथ देते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ एक संदेश जो हमारे पास भेजा गया और संदेश जरूर आपके लिए रखूँगा कि क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे साहब, जिन पर चढ़कर तुम कभी मेले देख रहे थे। तो ये सुंदर सा संदेश से सुंदर सुंदर और जो संदेश होते हैं जरूर आप हमारे लिए भी भेज सकते हैं और हम जरूर कोशिश करेंगे सुनाने के लिए। शिव जी, इस पे जो आज का विषय उसके अंतर्गत में कुछ और आप कहने वाले हैं।
1: वो हमें तो बहुत चीज़ करे है अकेलापन या ना इंसान है खातिन। नीदरलैंड में सब बोले है 10 आदमी में से एक आदमी है जो उनकी 10 में से एक है जो उनकी अकेले है और वो क्लोप हो भी। तो एक विषय में हमें कुछ पैसा मिलल है वो कर एक लीफ एंड लेट प्रोजेक्ट है, तो उनसे मैं ना कैश ब्रोक खरीदा और ना शुक्लाद और गहनी बांटे। तो वो बूढ़े लगन के बोले बहुत खुशी भाई हमें कितना आशीर्वाद दे। एक वो तो हम देखिए ओके जैसे दे बोले हम लौट के गए नहीं तो हम देखिए ओके डायरेक्ट काट के लगल खाए। तो देख सके वो सब कितना यही शाम है ना दिस दिस हेल एर अखोर दत्व दत्ते नहीं है मैं उफलतवा में खड़ी अकेला आदमी रहे तो इस तो वैसे ही है दिस नहीं अंदर।
0: तो दोस्तों जैसे कि विषय आपने सुन रहे हैं और बबली जी कितना और उसमें हम सब के लिए रख चुके हैं विषय जो कि एंसाम है, जो हम कहते हैं ना अकेलापन, जो शिव जी ने हम सब के अभी सुना चुके हैं। तो उस अंतर्गत में पर बबली जी अभी तो कुछ संदेश और बाकी था, तो क्यों ना पहले वो आप वो संदेश हम सबको सुना देते हैं।
2: हाँ जरूर। मंदिर में घंटा लगाने का कारण, जब भी मंदिर में प्रवेश किया जाता है तो दरवाजे पर घंटा टंगा होता है जिसे बजाना होता है। मुख्य मंदिर जहाँ भगवान की मूर्ति होती है में भी प्रवेश करते समय घंटा या घंटी बजानी होती है। इसके पीछे कारण यह है कि इसे बजाने से निकलने वाली आवाज़ से 7 सेकंड तक गूंज बनी रहती है जो शरीर के साथ हीलिंग सेंटर को सक्रिय कर देती है।

सुनने वालों, आज का जो हमारे दिए हुए जो संदेश संदेश जो अकेलापन जो आज हम सब कुछ न कुछ संदेश इसमें आपके साथ और बांट रहे हैं, तो यहाँ जो संदेश हमारे लिए रखा गया है कि कमजोर आए थे कमजोर ही जाएंगे, कमजोर आए थे कमजोर ही जाएंगे, बिना धन संपदा के आए थे, बिना धन संपदा के ही जाएंगे। पहला स्नान भी हमने स्वयं नहीं किया, अंतिम स्नान भी हम स्वयं नहीं कर पाएगी, अंतिम स्नान भी हम स्वयं नहीं कर पाएंगे। यही सच्चाई है दोस्तों,

0: दुनिया में हम आए हैं तो जीना पड़ेगा। और जीना पड़ेगा तो इस पे आप क्या कह रहे हैं शिव जी?
1: मतलब है यही कि चाहे अब इतना कांटा है सगरो, बाकी हम लोग के बच के चाहिए रहे के और देख के चाहिए रहे के दुनिया में, तो हम सोची वही के विषय में है ना मदर इंडिया में। तो ये फिल्म में वो तो दावेद लग बताया कि कैसे है।
0: दोस्तों हम जैसे कि शिव जी ने इशारा दे चुके हैं कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और मदर इंडिया से निकाला हुआ ये सुंदर सा गीत हम आपके लिए प्लेयर पे रखते हैं।

0: ये सुंदर सा गीत जो हम सब सुनने वालों, जो फिल्म का नाम मदर इंडिया से निकाला गया और जो आपके लिए रखा गया, आज का विषय जो जैसे कि शिव जी ने कहा है कि एंसम हेत और एंसम हेत के बारे में बातचीत हो रहा है और उससे भी कुछ और मिले जुले और संदेश जो हमारी खोजी सेना ने और खोज करके रखे हुए हैं, तो बबली जी हम सबको सुनाने वाले हैं। बबली जी, आगे का संदेश क्या है?
1: हाँ जी, आगे का संदेश है भगवान की मूर्ति। मंदिर में भगवान की मूर्ति को गर्भ गृह के बिल्कुल बीच में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर सबसे अधिक ऊर्जा होती है, जहाँ सकारात्मक सोच से खड़े होने पर शरीर में ऊर्जा पहुँचती है और नकारात्मक दूर भाग जाती है। कि जब हम भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो हमारे मन में अच्छे विचार आ जाते हैं और जो हमारे बुरे विचार होते हैं वो दूर भाग जाते हैं।
0: संदेश जो बबली जी ने रखे,

0: शिवजी इस पे कुछ कहने वाले हैं?
1: हाँ जी, अबे आप बोल लो कि खाली घंटी के विषय में ना कि मन दूसर हो जाते हैं, बाकी अभी प्रसाद जब उन चढ़ जाते हैं तो उनके खइयो तो कितना अच्छा लगे है, कितना स्वादिष्ट लगे है। तो भगवान उमन भोग लगाए के तू खइयो तो कितना अच्छा लगे, ऐसे है ना, तो ओहू पर अभी कुछ है। हाँ जी
0: दोस्तों, जैसे कि अभी शिव जी ने कहा तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि गत दिनों हम एक अनुभव ऐसा हुआ, एक बार यहाँ कार्यक्रम चल रहा था ज्योति का प्रकाश, और उसमें हमने सुना था कनक भवन का वृतांत, और गत दिनों हम वहां भारत देश में थे तो क्या देखते हैं कनक भवन, और वहां जो हमने देखा वो एक ऐसा वृतांत हमने देखकर दैट इज नीत बसखराइफ, वहां का आरती में भाग लेना, उसे हम कैसे बसकराइव करूं।

0: कि कैसे हम उसे बस्क्राइब करूँ।
1: हाँ जी, कि आपके पास वो शब्द नहीं है कि किस शब्दों से आप बयान कर सकें, बता सकें कि आपने क्या देखा।
2: हाँ वोमन है कि ऐसे बपाल चीज में तू ओकर न बस्क्राइब कर सके, न बोल सके कौन चीज, बाकी दिस हिल बिजोंदर है या
0: बबली जी। आप कुछ और संदेश हम सब के लिए रखने वाले हैं, सुनने वालों हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना पहले अपना संदेश हम सब के लिए जो हमारे खोजी सेना खोज कर हम सब के लिए रखे हैं सुना देते हैं।
1: हाँ जी जरूर। परिक्रमा करने के पीछे वैज्ञानिक कारण, हर मुख्य मंदिर में दर्शन करने और पूजा करने के बाद परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा 3, 5 या 7 बार से करनी होती है। जब मंदिर में परिक्रमा की जाती है तो सारी सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है और मन को शांति मिलती है।
0: तो ये भी एक चीज है जो हमें अनुभव करना पड़ता है। जैसे कि हम एक ज्योत देखे जल रहे हैं, उसमें से उजाला आते हैं, पर वो उजाला को कैसे हम जानेंगे कि उसमें गहराई कितना है? अगर आप उसी तेज को छुएंगे तभी आपको अनुभव हो पाएंगे।

0: सुनने वालों, आज का विषय जो एन सामहै थे, तो एन सामहै तसन बलंग रहा एक फैक्टर जिसमें शिव जी उस पर कुछ और संदेश रखने वाले हैं।
1: माँ ये एन सामहै खातिन अबे कलिया में एक जहाँ गया था हुआ ओकर एगो संस्था ओकर नाम है फ्राख एलकार। फ्राख एलकार कौन सी करे है, जैसे तू मांगे है ना कहूँ जाए घूमे या चले अब की तो मैं जाए कॉफ़ी पिए तो तू अपने में ऐसे कॉन्टैक्ट कर सके तो वो कर तू लेट हो सके। जैसे अब की तो कोई कोई जा बाइसाइकिल चलावे तो वो अभी एगो फरीन शाम है खातिन है अभी है। कितना कॉन्टैक्ट तू कर ले, कैसे कॉन्टैक्ट कर ले है, कैसे जाइए, कैसे आगे चलिए, तो ये सब इस चीज़ में इस विषय में ये खमीन तो देना देख वो कर खातिन पैसा है।

0: आज का विषय जो है इंसान है, तो उस पे बबली जी हम सबको कुछ सुनाने वाले हैं। तो बबली जी, आप हम सबको उस ओर ले चलिए।
1: हाँ जी जरूर। तुम और मैं पति पत्नी थे, तुम माँ बन गई, मैं पिता ही रह गया। तुमने घर संभाला, मैंने कमाई की, लेकिन तुम माँ के हाथ का खाना बन गई, मैं कमाने वाला पिता रह गया। बच्चों को चोट लगी और तुमने गले लगाया, मैंने समझाया, तुम ममता मई बन गई, मैं पिता रह गया। बच्चों ने गलतियाँ की, तुम पक्ष लेकर अंडरस्टैंडिंग मॉम बन गई और मैं पापा नहीं समझने वाला पिता रह गया। पापा नाराज़ होंगे कह कर तुम बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन गई और मैं गुस्सा करने वाला पिता रह गया। तुमने आंसुओं में माँ का प्यार और मेरे छुपे हुए आंसुओं में निष्ठुर पिता रह गया। तुम चंद्रमा की तरह शीतल बनती गई और पता नहीं कब मैं सूर्य की अग्नि सा पिता रह गया। तुम धरती माँ, भारत माँ और मदर नेचर बनती गई और मैं जीवन को प्रारंभ करने का दायित्व लिए सिर्फ एक पिता रह गया।
0: दोस्तों, ये सुंदर सा और संदेश जो बबली जी ने हम सब के लिए रखे और जो आज हम सब यहाँ पर इंसान है बलंगरिक फैक्टर, जो इस समय हमें ध्यान देना है, क्या हम अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा कर सके, उस अंतर्गत में एक छोटा सा गीत हम आपके लिए प्लेयर पे रख रहे हैं।

0: एक सुंदर सा गीत जो कुछ संदेश है इसमें ना बबली जी, तो आप अपना संदेश को आगे बढ़ाइए।
1: हाँ जी जरूर। माँ 9 महीने पालती है, पिता 25 साल पालता है, फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ बिना तनख्वाह घर का सारा काम करती है, पिता पूरी कमाई घर पे लुटा देता है, फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ जो चाहते हो वो बनाती है, पिता जो चाहते हो ला के देता है, फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ को याद करते हो जब चोट लगती है, पिता को याद करते हो जब ज़रूरत पड़ती है, फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ की और बच्चों की अलमारी नए कपड़ों से भरी है, पिता कई सालों तक पुराने कपड़े चलाता है, फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। पिता अपनी ज़रूरतें टाल कर सबकी ज़रूरतें समय से पूरा करता है, किसी को उनकी ज़रूरतें टालने को नहीं कहता, फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है।

वालों, ये सुंदर सा संदेश जो बबली जी ने रखे हम सब के लिए, तो हमारे जो त्योहारे आते हैं तो उस पर ध्यान देना कोशिश किया गया आपने ओर से, कि कुछ संदेश आपके लिए रखने के लिए, कुछ संदेश जो आपके लिए रखा गया कि ए इंसान है, जैसे कि आज का विषय रखा गया था, उस पर ध्यान देने के लिए।

फूलों की तरह यदि जीना है, फूलों की तरह बनना होगा। जीवन को यदि महकाना है, फूलों की तरह खिलना होगा। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।

0: जिंदगी छोटी नहीं होती है, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए हमारे साथी बबली आसरा जी, शिव किशन सिंह जी,
1: दीवाना है तेरा,
0: और मैं हूँ आपका सेवक संजय। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।
1: जिया तेरी कसम लागी छूटे ना।
0: सभी को एक नमस्कार, और आशा ये रखता हूँ कि कुछ संदेश आपके तक पहुँचे होंगे। ज्योति प्रकाश का लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है थोड़ा और प्रकाश उसमें आ जाए। सभी को नमस्कार।
2: दे

आओ शो मी दे ठुमका, शो मी दे ठुमका, तू झूठी मैं मक्कार। रणधीर का उसके बाद हम चलते हैं नौ टंकी कोड इंस्पेक्टर अविनाश के ओर हम चलते हैं। और नौ टंकी में क्या होता है दोस्तों, आओ सुना जाए तू।

और सैया जब मुझे बुलाएंगे तो कैसे हम नहीं जाएंगे, मैंने भी रान रखी है, तू झूठी है, तू मक्कार है, रणबीर शारदा प्रीतम सीरिया बता रहे है देविया का अमिताभ के साथ।

0: और हम भी यहाँ पर पानी पी रखी है। हमारे यारो क्या लोगो तुम, हम जानते ये गीत को जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया है।
1: चलो चलो चलो चलो, ले तो भाई, ले भाई चाबी।

और मेरे जिंदगी में आने को क्या लेंगे तुम। ये गीत गलत गाया गया है कि मेरे जिंदगी में जाने को क्या लोगे, और हकीकत में है उसको कहते हैं कि मेरे जिंदगी में आने को क्या लोगे। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों कि हमारा जिंदगी में आना है तो आपके फॉरवर्ड क्या है। फॉरवर्ड के बातचीत यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, तो आपको हम बता देना चाहते। तो इसके बाद हम जाते हैं चुनरिया के ओर, भैया बीबी नंबर 1 के ओर हम जाते हैं।

चुनरिया उड़ गया, अगर चुनरिया उड़ गया तो क्या देखने की मिलेगा, आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। और चुनरिया के बाद हम चलते हैं, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी प्यार के, जब कभी किसी ने किसी को प्यार में धोखा दिया है तो उस सब के लिए इस गीत को यहाँ से हम चलाते हैं। तो हम यही कहते हैं दोस्तों, दुनिया में धोखा तो कभी देना नहीं चाहिए, लेकिन जिस जिसको आप बहुत चाहते हैं, जिसके आप बहुत चाहते हैं खास करके, उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। सच्चाई से रहना, झूठ मत बोलना, उपकर्तमेंसे और उसमें आपको जीत होगा। जिस दिन आप सच्चाई से सामना करने को तांगत रखेंगे और उस दिन आम से जबर किसी नहीं होएंगे, कभी तुझसे जबर किसी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सच्चाई पे रहना और अपने चाहने वालों को कभी धोखा मत देना, यानी कि धोखा देना अच्छा बात नहीं है। कभी कभी दिल में इतना चोट लग जाता है कि उसको कुछ दवा और दारू, दवा दारू उसको ठीक नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो फिर से प्यार ही ओके अच्छा कर सकता है दोस्तों। तो हम चलते हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का।

और अच्छा सिला दिया है तूने और दिया है मेरे प्यार को। अगर जब किसी को धोखा देगे प्यार में दोस्तों, तो उसको ये गीत सुनना पड़ेगा। अगर धोखा दिया है तो ये गीत सुनना पड़ेगा। दार इस हेलमाल खीन एक्सक्यूज फोर फोर दैट ये आश निमांत फोर द खेक हैव हाउद अपन धोखा ना देलो है तो कि उस पे आपको क्या डर है। चोरी करना डर है, चोरी ना करो किसका डर है। इसके बाद हम चलते हैं मिलने के तुम कोशिश जरूर करना। मिलने की कोशिश तुमको जरूर करना है। कुमार शानू आशा जी ये गीत को आप लोग को सुनाएंगे।

जान टूट जाता है, लेकिन कोशिश करना हमारे यारो कि वादा ना टूटे, वादा टूटना नहीं चाहिए, और खास करके प्यार के वादा। उसके बाद हम चलते हैं झूमे जो पठान, और वो है शाहरुख खान। झूमे जो पठान, वो है शाहरुख खान और दीपिका।

कौन गीत हम चलाते हैं, अगर जो किसी के दीवाना हो गया है तो उस दीवानी के लिए ये गीत हम चलाते हैं, अगर जो किसी के ऊपर दीवाना हो गया है तो सब लॉफर्स के लिए ये गीत हम यहाँ से चलाते हैं।

मंजूर ऐसी दीवानगी किसको होता है? उसी को होता है जो दीवाना हो जाता है। तो उसी के लिए इस गीत है कि ऐसे दीवानगी देखी नहीं कहीं। और फिल्म के नाम है दीवाना, जिसमें शाहरुख खान, देविया भारती ने काम किए हैं। एंड बेस्ट मैन से वही खान दौर मत उनसे मोय प्रोग्रामा। और लठ लग गए है, जिसमें सैफ अली खान ने काम किए हैं।

फन होम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कोई शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं, और ये दर्द के बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोए पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं, आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज ही थे, जब तुम मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेरे आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मींस रोकेर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों कि कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे, प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए। और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं, प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोग लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो। और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है। और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों, मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है। आप तो जानते हैं जब लोग कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है, जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। और बैठ के और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों, और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हुई के भैया ये हंसते हुए, श्री प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए, नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। नजरे करम मुझे पर इतना न कर, मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इसके जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

बसी चुरा लिया है और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेस्ट मैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते हैं। अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

और दोस्तों टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपकी तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है उससे बचना।

और दोस्तों, क्या किया और क्या किया। आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल के लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

और ऐसा देश है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है, चाहे आप भारत में हो या सूरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है। चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सातो जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिल वाला। कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को गाते हैं।

सुनने वालों, सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म में भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जाए, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सयार। आओ सुना जाए।

की में होके और सवार चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जो आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जो किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवाननी और तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ऋषि कपूर देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी। फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चांद कोई दीवाना है और ये चांद कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेक होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और सबीर कुमार का यह गीत है जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और देविया भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

दोस्तों, और ये गीत क्या होगा दोस्तों, ये कुछ प्यार भरी गीत है, और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ पूर्वभाषी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न यानी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको सपने में पहले ही पता चल गया था कि उनके आने वाला समय कैसा है या उनके जीवन में कौन सी घटना घटेगी। आभूषणों पर अक्षरों का अर्थ। एक महत्वपूर्ण स्वप्न का वर्णन अयुमान पर्सनैलिटी नामक पुस्तक के 80-85 पृष्ठ मिलते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिल्ट प्रेकेट आगटे एक बहुत प्राचीन आभूषण पर खुदे अक्षरों का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा था। वह बेबीलोनिया के किसी सम्राट से संबंधित 3000 वर्ष से अधिक पुराना था जिसके दो टुकड़े थे। एक दिन आधी रात के स्वप्न में एक पुजारी ने बताया कि दोनों टुकड़े एक ही गोल वस्तु के तोड़कर बनाए गए हैं। दूसरे दिन हिल प्रेकेट ने उनको जोड़कर देखा तो स्पष्ट पड़ा गया भगवान नीलिम्ब को सम्राट कुरी गालजू की भेंट।

सुनने वालों, ऐसा ही एक संदेश मैं आपके लिए और रखने जा रही हूँ, सही वसीयत की सूचना। अमेरिका में सन 1937 में प्रकाशित नामक पुस्तक में चैफिन के एक धनी किसान ने 1905 में एक उत्तराधिकार पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी समस्त जायदाद तीसरे बेटे के नाम लिख दी, और 1919 में एक दूसरे उत्तराधिकार पत्र में जायदाद चारों बेटों में बराबर बांट कर लिख दी। बाइबल में रख कर बिना किसी को बताए भूल गया। 7 सितंबर 1921 को चैफिन का देहांत हो गया और पहली वसीयत के अनुसार जायदाद तीसरे बेटे को मिल गई। जून 1925 में चैफिन की आत्मा ने दूसरे बेटे को स्वप्न में बताया कि बाद वाली वसीयत ओवरकोट में रखी बाइबल के भीतर रखी है। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जायदाद चारों भाइयों में बांट दी गई। सुनने वालों, देखो अभी आपने सुना कि एक परिवार के स्वप्न, तो कि उनके पिताजी ने कैसे वसीयत बना के रख दी एक बेटे के लिए, फिर दूसरी वसीयत बनाई दूसरे तीन बेटों के लिए, लेकिन वो दूसरा उनको कागज़ नहीं मिला तो पहली वसीयत के मुताबिक पहले बेटे को ये सारी जायदाद मिलने वाली थी। लेकिन जब दूसरे बेटे को स्वप्न आया कि नहीं, एक और वसीयत बना के उन्होंने अपने यास में रखी हुई है, तो वो बेटे ने वो कागज़ निकाला, अदालत में पेश किया, फिर एक भाई के बजाय चारों भाइयों को बराबर जायदाद मिली।

सुनने वालों, आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए नए नए प्रोग्राम लेकर आता है। अब हम आगे चलते हैं। नेत्रों का फड़कना यानी आँखों का फड़कना। दाएं नेत्र की ऊपरी पलक, दाएं नेत्र की निचली पलक। धन यश प्राप्ति चिंता का विषय। बाएं नेत्र की ऊपरी पलक, बाएं नेत्र की निचली पलक। शत्रु से संघर्ष, कहा सुनी हो जाना, नीचा देखना। दाएं नेत्र का दायां कोना, कहा सुनी में नीचा देखना। बाएं नेत्र का नाक वाला, शुभ संकेत पुत्र प्राप्ति, शिष्य या कम आयु के प्रियजन से भेंट। यदि दाईं आँख फड़कती है तो शुभ, परंतु स्त्री के लिए अशुभ। यदि बाईं आँख फड़कती है अशुभ है, परंतु स्त्री के लिए शुभ है। दोनों एक साथ फड़कती हैं तो स्त्री को भय चिंता शोक हो जाता है। बायां नेत्र नीचे को शुभ होता है, बायां नेत्र ऊपर को चिंता भय शोक लड़ाई वाला होता है। सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना नेत्रों का फड़कना, यानी जब हमारी आंखें फड़कती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है।

सुनने वालों, स्वप्न विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में से सारे अंग ही फड़क सकते हैं, चाहे आँख हो, चाहे हमारा तालुआ हो, चाहे कंठ हो, चाहे कंधे हो, अब मूछे भी हो सकती हैं। सुनने वालों, समूची मूछ, शुभ, धन, धान्य, दूध, दही, सवारी, ऐश्वर्य। दायां भाग शुभ, विजय, बायां भाग कहा सुनी, झगड़ा। सुनने वालों, आप सबने सुना कि मूछें फड़कने से भी लाभ हो सकता है और परेशानी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। ये संदेश जो आप सबने सुना, ये स्वप्न विज्ञान से निकाला गया है। सुनने वालों,

तालू का फड़कना, कंठी की कंठी, आर्थिक दृष्टि से शुभ भोगों की प्राप्ति, तालू का दायां भाग रोग से परेशानी, तालू का बायां भाग किसी अपराध में बंधी, दाढ़ी फड़के अपशकुन, लड़ाई मुकदमे में हार, दाढ़ी का दायां भाग सुख की प्राप्ति, दाढ़ी का बायां भाग अधिक अच्छे धन यश दोनों मिले।

सुनने वालों, हमारा अगला संदेश है कंठ का फड़कना। पुरुष का इच्छित भोजन मिले, स्त्री का कंठहार आदि मिले। कंठ का बायां भाग अच्छी उपलब्धि, कंठ का बायां निचला भाग अल्प मूल्य के आभूषण मिले। कंठ का ऊपरी भाग स्वर्णमाल मिलने की संभावना, कंठ का निचला भाग शस्त्र पीड़ा। सुनने वालों, ये संदेश रखा गया कंठ के बारे में जो हमने निकाला स्वपन विज्ञान से। सुनने वालों, आप सबको तो मालूम है कंठ किसे कहते हैं। कंठ कहते हैं गले को, और कहते नहीं कि गले के लिए हार भी चाहिए, कंठ हार।

सुनने वालों, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न में देखे गए रंगों का फल, कि अगर हमें सपने आते हैं उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं तो उन सपनों का क्या मतलब है। लाल रंग, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन। सफ़ेद रंग, अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना। काला रंग, दुर्भाग्य। सुनने वालों, ये है स्वप्न में रंगों के बारे में स्वप्न, कि जब हमें सपने आए उसमें रंग दिखाई दे तो उन सब का क्या मतलब होता है। सुनने वालों, आप सबने सुना कि सपन में देखे गए रंगों का क्या महत्व होता है और उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि लाल रंग दिखाई दे तो उसमें अच्छा स्वास्थ्य होगा और आयु हमारी बढ़ेगी। और जैसे कि आपने सुना कि हरे रंग का क्या मतलब होता है, हरा रंग धन कमाने की योग्यता, कि अगर हरा रंग दिखाई देगा सपने में तो हमें धन कमाने की योग्यता प्राप्त होगी। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन, कि अगर हमें सपने में नीला रंग दिखाई दे तो उससे हमारा परिवार सुखी होगा। सफ़ेद रंग दिखाई दे तो अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति, कि हम समाज में एक अच्छा सा स्थान प्राप्त करेंगे। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना, कि हमें अपना मकान हो जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना, यदि सपने में हम लोगों को पीला रंग दिखाई दे तो उसका मतलब है कि हम दूसरों की नफरत के शिकार बनेंगे, दूसरे हमसे जलेंगे। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना, कि अगर हमें सपने में भूरा रंग यानी ब्राउन रंग दिखाई दे तो दूसरे लोग हम पे दोष लगाएंगे कि तुमने हमसे बेईमानी की है। काला रंग, दुर्भाग्य, वो तो आप सब जानते हैं कि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का ही होता है।

स्वप्न में देखी गई धातुओं का फल, सोना, अनेक कठिनाइयां, रोग, धन संपत्ति की हानि, चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात, तांबा, यात्रा में दुर्घटना, लोहा, अपने परिश्रम। सुनने वालों, सपने में जब हमें धातुएं दिखाई दें, यानी कि सोना चांदी जिससे बनता है, तो उसके क्या क्या परिणाम होता है? सुनने वालों, जैसे कि धातुओं के से क्या क्या परिणाम होता है, जैसे सोना खाउट हमें अगर दिखाई दे सपने में, तो उससे हमें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, रोग होता है, धन संपत्ति की हानि। हमारी नानी और दादी भी कहते होते थे कि सोना मिलना भी मुश्किल है और खोना भी मुश्किल है। अगर मिल जाए तब भी उसका अच्छा परिणाम नहीं होता, अगर खो जाए उसका भी अच्छा परिणाम नहीं होता। चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात। अगर सपने में हमें चांदी दिखाई दे तो उससे हमें प्रेम में निराशा होती है और कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है। सुनने वालों, तांबा, अगर तांबा हमें सपने में दिखाई दे तो यात्रा में दुर्घटना हो सकती है। सुनने वालों, अगर सपने में हमें धातुओं में लोहा दिखाई दे तो उसका मतलब है अपने परिश्रम, कि हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने वालों,

सुनने वालों, बुरे सपनों से बचाव, यानी कि अगर हमें बुरे सपने आए तो उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सोते समय व्यक्ति का हाथ उसके सीने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकलने वाली विद्युत से हृदय की स्वाभाविक क्रिया अधिक होती है। सोते समय विष्णु, कृष्ण, माधव, महामुनि कपिल, आस्तिक का स्मरण कर ले। सोते समय व्यक्ति यह शावर मंत्र 3 बार बोलकर बाएं घुटने पर 3 बार हाथ मारकर शिव का स्मरण करके सो जाए। शिव की कूची, बजर का ताला, ई देही का बजरंग रखवाला, शिव गौरख, शिव गौरख, शिव गौरख। सोने से पूर्व स्वास्थ्य प्रसन्नचित हो तथा सोते समय उत्तर की तरफ सिर नहीं करना चाहिए।

सपने में अंक देखना, यानी सुनने वालों, अगर हमें सपने में साइफर्स दिखाई दें तो उसका क्या मतलब होता है? स्वप्न में 8 का अंक देखना दुर्भाग्य सूचक होता है। हमारा निजी विचार है कि शुक्र के तुला 7 या वृषभ 2 लगन वालों को 8 शनि का अंक दुर्भाग्य सूचक नहीं होगा। 18 का मंगल अंक देखना जातक को विपत्ति में डाल सकता है, परंतु मेष वृश्चिक लगन वालों को कोई हानि नहीं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। 11 का अंक देखना सौभाग्य सूचक है। सुनने वालों, अब आपको अगर सपने आए और उसमें आपको साइफर्स दिखाई दें

सुनने वालों, अगर आप सपनों में खुद को अस्वस्थ यानी रोगी देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अपने सिवाय किसी अन्य को अस्वस्थ देखने से कष्ट विपत्ति होती है, रोगी भी होता है, परंतु स्वयं को यानी अपने को अस्वस्थ देखने से प्रसन्नता सुख शांति मिलती है, परिवार के साथ मिलाप बढ़ता है।

विभिन्न देशों में छींक संबंधी मनोरंजक मान्यताएं, यानी सुनने वालों अलग अलग देशों में कि छींक आने पर कैसे लोग उनका उनके बारे में सोचते हैं। ब्रिटिश न्यू गियाना के क्योटा जाति के लोग शयन कक्ष यानी स्लाब कमर में छींक को इस बात का सूचक मानते हैं कि आत्मा इस शरीर में वापस आ गई है। गुल्लू जाति के लोग छींक आने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। टोंगा जाति के लोग यात्रा आरंभ के समय छींक आने को अपशकुन मानते हैं। जमैका के नीग्रो जाति के लोग मानते हैं कि यदि नाक में खुजली का अनुभव हो तो लोग जातक की बुराई सोच रहे हैं। एस्टोनिया के निवासी यह मानते हैं कि यदि दो गर्भवती स्त्रियां यानी दो स्वांगर औरतें एक साथ छींकें तो वह कन्या को जन्म देंगी, और यदि दो पतियों को एक साथ छींक आए तो लड़कों का जन्म होगा। जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि जूता पहनते समय छींक आ जाए तो उसका अत्यंत शुभ लाभ मिलता है। पर्शिया के लोग छींक आने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शैतान से उनकी रक्षा की जाए। यूनानी लोग छींक को देवी कृपा का संकेत मानते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं तिथियों के अनुसार स्वपन फल, यानी कि जो डेट है, तारीख है, 1, 2, 3 महीने में आती है, अगर उसके अनुसार सपना आए तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 1 का स्वपन विलंब से फल देता है, 2 तारीख का स्वपन विपरीत फल देता है, 3 तारीख का स्वपन विपरीत तथा विलंब से फल देता है, 4-5 तारीख का स्वपन 2 माह से 2 वर्ष में फल देता है, 6-7-8-9-10 तारीख का स्वपन शीघ्र सत्य फल देता है, 11-12 तारीख का स्वपन विलंब से फल देता है, 13-14 का स्वपन फल मिथ्या देता है, पूर्णिमा का स्वपन फल अवश्य देता है, कृष्ण पक्ष की 1 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 2 तारीख का स्वपन फल सार्थक परंतु विलंब से, 3-4 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 5-6 तारीख का स्वपन फल 2 माह से 3 वर्ष में, 7 तारीख का स्वपन फल शीघ्र मिलता है, 8-9 का स्वपन फल विपरीत देता है, 10-11-12-13 तारीख का स्वपन फल मिथ्या होता है, 14 तारीख का स्वपन फल सत्य तथा शीघ्र होता है, अमावस्या का स्वपन फल मिथ्या देता है। सुनने वालों, ये सब थे कि तिथियों के अनुसार अगर हमें सपना आए तो उसका क्या फल मिलता है।

सुनने वालों, हम कुछ बातों को अच्छा भी मानते हैं, शुभ मानते हैं, ऐसे ही जैसे हथेली का शगुन। यदि प्रातःकाल जागने पर हाथों की हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाए तथा हाथ में कलश, ध्वजा और छत्र हो, तो समझो कि 7 माह तक यानी 7 महीने तक धन का लाभ होता है तथा भावी उन्नति भी होती है यानी तरक्की भी होती है। सुनने वालों,

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काय को करे। जब किसी का मन उदास होता है तो भगवान राम यानी राम जी ही उसका बेड़ा पार करते हैं। और लोग बेड़ा पार करने की सभी सोचते हैं लेकिन कर तो एक ही सकता है। तो हम बढ़ते हैं आज का जो विषय है उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं उस विषय में।
1: जरूर राजेंद्र जी, विषय का बोल जो आज का वो तो अभी इर्स्त हलफ में नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा हलफ में विषय के और अभी छलांग लगाएंगे। पर इर्स्त हलफ में जो हमारे कार्यक्रम 2 घंटा का होता है ना शांता जी, तो पहले आज विषय में हमारे विशेषज्ञों ने ये रख दिया है कि कैसे बहुत साल पहले लोग और वाहन चालक बोलते हैं ना,
0: हाँ
1: वाहन चालक,
0: वाहन चालक,
1: तो कैसे पहले कैसे हु सेंस ऑफ द इदेइख कोमन ऑन तखा फ्लीख। तो शांता जी आपको पता कब कब और कैसे ये इस बात पे लोग सोचे कि हम इंसान उड़ सकते हैं,
2: इंसान उड़ सकते
1: के माध्यम से, वाहन के माध्यम से।
0: हाँ जो जहाज रहा,
1: जहाज
2: और जहाज, हाँ
3: इंसान ने जब पक्षियों को उड़ते देखा तो उन्होंने सोचा कि अगर पक्षी उड़ सकते वैसे हम भी कुछ ऐसा वाहन बनाएं कि जिससे हम भी उसमें बैठ के जा सकें।
0: नहीं, इस विषय में थोड़ा सा एक गहराई और है।
3: हाँ जी मास्टर जी,
0: कि जब रामायण की कथा सुनी कि वहाँ से पुष्पक विमान में, पुष्पक विमान था उनके पास और वो लंका से सब लोग जितने भी बानर रीच और भगवान राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी सहित सब लोग उसमें बैठ के अयोध्या आए थे, और फिर भी उसमें वो ऐसा विमान था कि उसमें जितने लोग भी बैठे फिर भी एक सीट खाली बचता था,
1: ऐसा
0: उसकी विशेषता ये थी। तो जब ये कथा सुनी बड़े बड़े विद्वान लोगों ने और जिन्होंने ये हवाई जहाज बनाया था, उन्होंने यहीं से आइडिया लिया कि अगर उड़ने वाली कुछ चीज़ होती होगी तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं। तो वहीं से उस जहाज का जो है
1: जो शुरू हुआ
0: और आज पूरी दुनिया यहाँ से वहाँ जा रही है।
1: पर मास्टर जी वो बात हो जाता कि वो तो कितने, क्योंकि ये आप बोल कह रहे हो
0: जी
1: सतयुग का बात है ना,
0: हाँ
1: तो ये सतयुग उसके बाद में
0: त्रेता का
1: बात, तो त्रेता के बाद द्वापर आए अब कलयुग में, और अभी उड़ने के तो बस यानी कि जो नई खंती नॉन द
2: द्री
1: नॉन द द्री में जो दो भाई थे ना
2: जी,
1: दो भाई राइट जो थे,
0: हाँ।
1: तो उन्होंने पहला बार एक ऐसा चीज बनाए थे जिसे बड़ा गर्व के साथ उन्होंने ये बात को रखे कि हमने आज एक जहाज बनाया जिसे उड़ पाए, और वो सिर्फ मेरे ख्याल से एकदम 12 सेकंड जो आसमान में थे और स्वीफनंद अर्थक मेतर जो उड़ पाए थे, तो पर उसी के माध्यम से उसी से और शुरू किए और आज अब देखिए कितने बड़े बड़े जहाज हो गए हैं ना।
2: तो वो बात ये भी आए के पहुंचे हैं जैसे अभी राजेंद्र जी ने कहा ना कि ये तो अभी तो 100 साल है ना, और जो राम के कथा के वो विमान जो अभी राजेंद्र ने वो तो सालों सदियों पुराना के बाद है,
1: सदियों पुराना
2: के बाद है। और ये मैं भी सुनी हूँ कि जब जो बिब्लियोटेक वहाँ पे भारत के जो था
3: लाइब्रेरी,
2: हाँ नालंदा बिब्लियोटेक है,
3: हाँ
0: नालंदा,
2: तो उस बिब्लियोटेक वो मुगल के युग में जब वो बिब्लियोटेक को जलाने से पहले तो वहाँ से अब आज़ाद नहीं हुआ था भारत, ये हमारे अंग्रेजों और यूरोप वाला, तो वहाँ से ऐसे कई पुस्तकें जो हमारे ऋषि मुनि जो वहाँ बना कर रखे थे, तो वहाँ से ऐसे कई पुस्तकें वहाँ से सब लेकर आई है यूरोप में और ऐसे अन्य देशों में बा,
1: और आगे तरक्की भइल है यानी कि टेक्नोलॉजी के,
2: तो वो सब तो संस्कृत में लिखा था, तो अब संस्कृत पढ़ने के लिए तो हमारे गोरेजात भी गए सीखने के लिए संस्कृत पढ़ने, तो संस्कृत पढ़ के तो वो जो किताब लिखा था तो उसको अनुलित किया है, तो इसी प्रकार से सब ऐसे तो अब ये हमारे यूरोप वाला और ये गोरे लोग कहते कि उन्होंने निकारे।
1: पर राजेंद्र जी देखो शांता जी ने कितना जानकारी हम लोग के दे दी ना, कि जो आज हमारे संत मुनियों के लिखे हुए से हम लोग के टेक्नोलॉजी कितना आगे, दुनिया की तरक्की कितना भाई।
2: हाँ, ये जो शब्द मैं कह रही हूँ, ये शब्द जो है हमारे भारत के एक विद्वान जो खोजबीन कर, और यहाँ पे भी एक हमारे हॉलैंड के एक रेडियो से ये प्रचार की है, तो हमने सुनी, तो वही बात मैं यहाँ दोहरा रही हूँ।
1: बहुत अच्छा रूप से। पर शांता जी, ऐसा है कि जब हमें, जब ये पुष्प, क्या कहते हैं राजेंद्र जी, पुष्प विमान,
0: पुष्पक विमान,
1: पुष्पक विमान, ये एक विमान था कुबेर जी का ना।
0: हाँ।
1: और जब इस बात को, जब रामानंद सागर ने जो रामायण बनाए थे ना
0: जी,
1: नहीं शासन ताकत में, तो जब हमने पहला बार इसको दृश्य देखे कि कैसे बनाया गया ना, तो अब जब इस बात का चर्चा हो रहा है, तो इसमें वो करैक्टर का ख्याल आ रहा कि रावण का करैक्टर जो था उसमें, तो क्यों ना पहले हम, शांता जी, पहले कुछ कार्यक्रम में धुन डालते हैं कि रावण जो जा करके और सीता का हरण किए थे, और फिर वहां हम लोग देखे पहला बार कि पुष्पक विमान किस प्रकार से, जो अपने संत मुनियों के और जा करके ज्ञान से वो ऐसे आफ बेल किए थे ना
2: जी। हाँ।
1: तो राजेंद्र जी, क्यों ना एक सुंदर सा पहले हम लोग दृश्य डालते हैं उस, और
0: जो दृश्य है उसके बोल बहुत ही अच्छे हैं, और यही रात अंतिम, यही रात भारी, रावण पूजा करता है, और इसी बहुत ही अच्छा जो भजन करता है भक्त, रावण शंकर जी का भक्त रहता है, और उसकी वो आखिरी रात होती है, तो उसी आखिरी रात के विषय में रावण की एक झलक इस प्रकार से देखने को मिली।

0: यही रात अंतिम यही रात भारी।
1: तो जब रावण की रात अंतिम हो गई है तो भारी तो होगी ही। तो बात करते हैं, अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। पंचवटी यानी पंचवटी का स्थान जो है, जहाँ प्रभु श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण वनवास के समय रह रहे थे, वो जगह पंचवटी नाम से, हमारे मामा जी तो वहां गए भी हैं पंचवटी में। यही सूपनखा आई थी, उस प्लेस जो जगह रहा वहां सूपनखा आई थी, सूपनखा, और भाई और लक्ष्मण से विवाह करने के लिए उपद्रव करने लगे कि हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी से पहले बोला, फिर वो बोले कि हम तो यति हैं, हम तो नहीं कर सकते। फिर राम जी के पास गए, राम जी बोले हमारे पास, हमारे तो ऑलरेडी सारी सुरा है। इस प्रकार से
2: राजेंद्र जी बात ये हो जाता है वहाँ। अब ये बात को तो हम लोग बहुत देखे ना रामायण में।
1: हाँ, हाँ।
2: जा करके जो सूपनखा नाम ना,
1: हाँ, सूपनखा
2: रावण का बहन ऐसा जा करके और लक्ष्मण जी से ये मांग किया कि मुझसे शादी कर लो।
1: हाँ, पहले राम जी से किया, फिर लक्ष्मण जी से किया, फिर राम जी से, फिर लक्ष्मण जी से, बहुत प्रकार से, अलग अलग प्रकार से बोला था। फिर लक्ष्मण जी ने उनकी नाक कान ही काट लिया।
2: शांता जी, आपको पता था?
3: हमने पढ़ी और देखी भी है।
1: हाँ, रामायण में देखी होगी। रामायण तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा
2: प्रचलन
1: वाला जो।
2: और ये बात को सभी जानते हैं कि सूपनखा जब पहले जब रामलीला हुआ था ना, तो रामलीला होते थे हमारे और गाँव में, और जिस दिन सूपनखा के नाक कटाए वाला दिन होता था तो वो दिन और ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाता था। और खास करके कुछ लोग जो राक्षस बन के, और ऐसे हम लोग बच्चे थे, तो थोड़ा से वो गदा से मारते थे ना हम लोग के, ताकि हाँ साइड में रहे। और उस दिन बड़ा हंगामा होते थे जिस दिन पंचवटी में जा करके। पर ये बात तो अब आज ये, क्योंकि हम तो थोड़ा डरते थे, वो राक्षस लोग इस प्रकार से बनाया जाता था, भयानक रूप दे देते थे, क्योंकि वो भी एक ऐसा है कि सूरीनाम में कुछ कलाकारों थे जिन्होंने, जिनमें वो कला था कि किस प्रकार से जो मास्क आदि बनाने का ना, कैसे बनाते थे ये इस बात को पता नहीं, पर हर बार कहीं कोई जानवर की तरह नहीं, कोई अलग अलग रूप दे देते थे। ये बात चलो 150 साल पहले लेकर के हमारे भारतवासी जाकर सूरीनाम में चलते रहे, पर आज तलक भी देखो ना कि कितना उस समय पे, जबकि सामान कितना कम थे, और वो लोग ऐसा ऐसा और
3: अपना कल्पना,
2: हाँ, अपने
3: बना देते थे।
2: सही बात।
3: फिर भी रावण के ये खूबियां
2: है राजेंद्र जी।
1: जी,
4: रावण के ये खूबियां, अगर हम यहाँ बात करते हैं सूपनखा के बारे में ना, तो वो अपने बहन के सम्मान के लिए भगवान से लड़ चुका।
2: बहन जो यानी कि भाई के, अपने बहन के लिए,
4: हाँ, बहन के सम्मान के लिए वो भगवान से भी लड़ चुका, लड़ पड़ा।
2: तो शांता जी, अभी गत दिनों भी देखो हम लोग का भी त्योहारों में त्योहार भी आए, और एक त्योहार भी होता है भैया दूज,
4: दिवाली के
2: कुछ तीन दिन बाद में होते हैं, और वो भी एक भाई और बहन का प्रेम प्यार के बारे में होते हैं ना।
4: जी,
2: उस दिन भाई लोगन बहन के घर जाते हैं, तिलक लगाते हैं बहन, और उन्हें के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं ना। पर यहाँ ये वृतांत इसमें थोड़ा से जोड़ दिया गया कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक बहन के लिए भगवान से उन्होंने
4: लड़ने के भी तैयारी
2: हो गई।
4: हाँ।
2: तो दोस्तों ये सोचने वाला बात हो जाता है। राजेंद्र जी, क्यों ना हम आगे बढ़ते हैं ये वृतांत के लेकर।
1: हाँ, वृतांत को आगे बढ़ाते हुए फिर लक्ष्मण जी विवश होकर सूपनखा की नाक यानी नासिका काट दी, और आज उसी स्थान को हम नासिक महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं,
2: जो भारत में वो जो स्थान नासिक।
1: हाँ, वहीं पे नासिका काटी गई थी सूपनखा की।
4: तो ये आज पता चला।
1: हाँ, पुष्पक विमान में जाते हुए सीता जी ने देखा कि एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए कुछ बानर ऊपर की ओर कौतूहल से देख रहे हैं, तो सीता जी ने अपने वस्त्र की कोर फाड़ कर उसमें अपने कंगन बांध कर नीचे फेंके, ताकि राम को उन्हें ढूंढने में सहायता प्राप्त हो सके। जिस स्थान पर सीता जी ने उन बानरों को ये आभूषण फेंके थे, वो स्थान ऋष्यमुख पर्वत जो आज के हम्पी यानी कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद वृद्ध गिद्धराज जटायु ने,
2: राजेंद्र जी ऋषि मुख पर्वत वहीं पर यानी कि वानरों के लिए सीता जी ने और जाकर के विमान से और अपना आभूषण
1: आभूषण फेंके थे ऋषि मुख पर्वत पे, वो स्थान कर्नाटक में है, उसको बोलते हैं हम्पी,
2: हम्पी स्थान का नाम
1: जी
2: है।
1: इसके बाद वृद्ध गिद्धराज जटायु ने रोती हुई सीता जी को देखा कि कोई राक्षस किसी स्त्री को ब्लाक यानी अपने विमान में लेके जा रहा है। फिर जटायु जी ने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया, रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए।
2: ओ हो हो, पंख वहीं कटा गया,
1: वहीं कटा गया। इसके बाद जब राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही जटायु का सबसे पहले संबोधन किया, हे पक्षी कहते हुए किया, और उस जगह का नाम दक्षिण भाषा में ले पक्षी यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है।
2: स्थान का नाम आंध्र प्रदेश,
1: आंध्र प्रदेश तो वो स्टेट है लेकिन स्थान का नाम है ले पक्षी,
2: ले पक्षी।
1: हाँ,
2: तो हमारे सुनने वालों भी कितने लोग हैं जो वहां पर जरूर और जा करके दर्शन किए होंगे ना।
1: हाँ, अब समझ में आया कि पंचवटी, हम्पी, ले पक्षी, श्रीलंका, सीधा रास्ता, सब लोग समझ ही गए होंगे कि पंचवटी से हम्पी, हम्पी से ले पक्षी और इसके बाद श्रीलंका, सीधा रास्ता आता है। सबसे छोटा रास्ता हवाई रास्ता, यानी हमारे जमानों में विमान के सबूत, और जब लोग गूगल ऐप पर देखते हैं तो तब पता चलता है कि रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया सत्य इतिहास है, जिसमें समस्त वैज्ञानिक प्रमाण आज भी उपलब्ध है और लोगों को ये प्रमाण देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ से जाते हैं, अभी हमारे मामा जी भी गए थे वहाँ पे, और जहाँ पे भगवान राम रहे, और उसके बाद कई जगहों गए, और बहुत सारे लोग मैंने सुना है लोग बताते हैं कि हम श्रीलंका गए वहाँ ऐसा हुआ। तो जो हमारे भारत के लोग पहले सूरीनाम गए, सूरीनाम से नीदरलैंड्स में आए, और उनकी जो वो रहते तो यहाँ हैं लेकिन उनका जो ब्लड रिलेशन है वो भारत ही है, और छः छः महीने में या साल भर में एक बार लोग वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो इस प्रकार का जाना भी चाहिए, और लोग अपने अपने कार्यक्रम में छुट्टी फकांसी लेके इन लोग इन तरफ जाते हैं और इनका आनंद भी लेना चाहिए। यहाँ जाने से बड़ा सुकून मिलता है लोगों को और लगता है कि हाँ ये वो जगह है, तो जो लोग जाना चाहेंगे तो जा भी सकते हैं इन जगहों पे।
2: तो राजेंद्र जी ये बात हो जाता है कि ना कि सिर्फ हमारे भारतीय लोग इंडिया को जाते हैं, ना दुनिया के हर एक कोना से, और यहाँ तक इराक ईरान का लोग भी, और सभी देशों से। एक ऐसा देश है भारत जहाँ पर लोग कोई प्रकार से रुकता नहीं, उधर जाने का एक बार ये चले जाते हैं तो बार बार उसके खींचते रहते हैं। पर ऐसा भी होता है कि कितने लोग गए हैं यहाँ से एक बार और जो नहीं पसंद आया तो उसके बाद में फिर दोबारा नहीं जाता, ऐसा भी होता है ना शांता जी?
4: ऐसा भी है, ऐसे कई व्यक्ति भी गए हैं और जिसको पसंद नहीं आई वो दोबारा नहीं जाना चाहते हैं।
1: हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति जो है एक जैसे नहीं होता है, अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, अलग सोच है, अलग विचार है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि एक ही चीज सबको अच्छी लगे। तो जिस प्रकार का जो व्यक्ति है, जिसको जो अच्छा लगता है, पूर्ण रूप से व्यक्ति स्वतंत्र होता है, कोई गोवा जाता है तो कोई राम जन्मभूमि जाता है, भारत का ही एक व्यक्ति, तो जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो जाता है, और उस प्रकार का जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी थी तैसी अपनी भावना के अनुसार व्यक्ति जैसी रखता भावना वैसे उसका हो जाता है।
4: जी जी।
2: पर राजेंद्र जी, जैसे हमारे खोजी सेना, जैसे आप कहते हैं ना, हमारे खोजी सेना ने हम लोग के लिए यहाँ पर और खोज करके रख दिए है ना, पंचवटी से और जा करके श्रीलंका।
1: हाँ,
2: तो ऐसा एक चित्र बनाइए, एक चित्र मेरे ख्याल से नासा का चित्र है ना, तो ऐसे एकदम सीधे सीधे वो अपना विमान से वहां पर पहुंचे श्रीलंका,
1: सीधा
2: एकदम सीधा,
5: लेकिन ये भी है कहाँ नासिक, कहाँ कर्नाटक और कहाँ श्रीलंका, एकदम नीचे।
2: तो यही बात हो जाता मत चित्र के अनुसार देखा जाए कि देखो एक कार्यक्रम हम लोग बनाए थे ना राम सेतु, तो उसमें देख बताया गया कि कितना लंबा चौड़ा है वो सागर को पार करना था ना
1: जी।
2: और यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि इतना सो अक्यूरेट कि उस समय पे और जा कर के विमान जो पुष्प विमान है और जा कर के यहाँ से और निकल करके एकदम श्री लंका तलक किस प्रकार से पहुंचे, तो ये एक सोचने वाला बात हो जाता कि अभी कितना चीज है जो अभी तलक लोग खोज में है।
4: वाकई में तो ठीक कहा संजय जी कि लोग अभी खोज में वेतन स्काप इस न्यू आनत सुकतर वेल दी आल बफेस्ट सेन हे फेल बफेस्ट सेन आल इस बफेस्ट मार ओम दैट मैन हैथ नीट वेल एक्सेप्टेर खान से सेल्फ अप ऑन द शुक।
2: अब जैसे नासा ने संदेश रखे थे कि सूर्य में और जाकर के कुछ छेद और उसके अंतर्गत में मंत्र द्वारा मैंने सुना है कि वो तो कितने मंत्र जो हमारे होते तो कितने पुराण
4: जी,
2: तो वो तो कब के संदेश दे चुका है, ये अब आए हैं, अब इसका ज्ञान हो रहा है कि कितना व्हाट द अवस्थांत इज टू द अर्थ एंड सो ऑन, ऐसे इस प्रकार के और अब संदेशों धीरे धीरे और अक्यूरेट भी और बढ़िया भी, क्योंकि अब आजकल मार्स जुपिटर और यानी कि ग्रहों पे हमारे वैज्ञानिक लोग पहुंच चुके हैं ना।
4: हाँ।
2: और फिर भी कितने चीज है जो आगे से हमारे संदेश में रखा गया और जब अब बफेस्तक हो रहा है, तो राजेंद्र जी क्यों ना हम एक और सुंदर सा
1: शिव तांडव जो है रावण का, रावण द्वारा रचित है, और जब रावण की, रावण एक बार अपनी

0: ये सुष्टि से और रावण के हाथ छोड़ दिए।
1: राजेंद्र जी, क्यों ये रावण महाराज जो है, क्यों गाय के वो शिव के पर्वत में हिलाए, क्यों के?
0: क्योंकि जब व्यक्ति पे अपनी ताकत का अभिमान हो जाता है तो वो चाहता है कि उसको दिखाया जाए, प्रत्यक्ष किया जाए। तो वही वो दिखाना चाह रहा था और उसकी दिखाई से ही वो हो गया।
1: हाँ, वो अपना दाखेंगे कितना उतना क्राफ्टी रहा ना, उतना हाँ, उतना शक्ति रहा, ताकि सब जगह अपन शक्ति प्रमाण कर चुका था। दाखेंगे अपना रहेगा रहा, तब इनक्स तो के बचल रहा कि जहाँ शिव जी के निवास है ओके जाके हिलाए। तो देखो ना उसका ताकत और दाखेंग, ऐसे भी एक एक सीख भी है ना राजेंद्र जी की जीवन में, ऐसे ऐसे शांत नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं कहती कि कुछ बुराई करो, पर शांत नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करना
0: नहीं,
1: चाहिए। कुछ
0: बुराई क्यों करो जब अच्छाई करने के लिए है?
1: ना ना, मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये तो रावण के जो बुराई कर रहा था ना उसका, मैं ये इस बात पे कहती हूँ कि जीवन में बैठना नहीं चाहिए।
0: हाँ,
1: कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए अपना के उद्धार करने के लिए,
2: क्योंकि जीवन में तरक्की होना ही चाहिए।
1: हाँ, देख रावण ने उसका शिव जी के वहाँ पर्वत हिला दे और उसको नाम हो गए, आज तक उसका लोग गाते हैं, उसका तांडव भी हो गए।
2: तो उसका तांडव भी हो गया। और ये बात हो जाता राजेंद्र जी की, प्यार और विश्वास दो ऐसा पंछी है, इसमें अगर एक उड़ जाता तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। तो क्यों ना हम पहले वो शिव तांडव के बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी संदेश बाकी है ना,
0: बहुत बाकी।
2: हो तो चला देते हैं पहले
0: की ओर बढ़ेंगे, लेकिन क्यों ना शिव तांडव पहले चला दिया
2: जाए।
0: क्योंकि लोग भी तो चाहेंगे शिव तांडव क्या है, इंतजार कर रहे होंगे।

0: तो राजेंद्र जी, ये सुंदर संदेश जो आपने रख रहे हैं हम सबके लिए, और ख़ास करके जो रावण का और संदेश है उसमें कुछ और आपको रखना है।
1: क्यों ना हम थोड़ा सा बात करते हैं ऋषिमुख पर्वत की और रावण के बारे में। हाँ बबली जी, आप बताएंगे।
2: हाँ जी जरूर। बस रावण ने सीता जी का अपहरण पंचवटी नासिक महाराष्ट्र से किया और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी कर्नाटक, ले पक्षी आंध्र प्रदेश होते हुए श्रीलंका पहुंचा। आश्चर्य होता है जब हम आधुनिक तकनीक में देखते हैं कि नासिक, हम्पी, ले पक्षी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में है। अर्थात यह पंचवटी से श्रीलंका जाने का सबसे छोटा रास्ता है।
1: हाँ, तो यही रास्ते में जब लोग जाएंगे ऊपर से देखेंगे जहाज से तो एकदम सीधा दिखेगा, और उस समय जहाज तो नहीं रहा लेकिन पुष्पक विमान तो रहा, तो उस पुष्पक विमान के अनुसार लोग चलते थे। लोग कहाँ से चलते थे, लेकिन केवल उस समय तो रावण ही चलता था, और बाद में भगवान राम ने वो पुष्पक विमान को श्रीलंका से अपने भारत में लेके आए। और वो पुष्पक विमान रावण का भी नहीं था, वो कुबेर का था, कुबेर से उन्होंने छीन लिया था। और फिर वो हमारे यहाँ पे अभी हमारे मामा जी गए थे उस जगह पे उतरा,
0: और जहाँ पर तुलसीदास जी ने और घिस घिस करके और
1: चित्रकूट धाम में,
0: चित्रकूट धाम,
1: हाँ, और अयोध्या में वो पुष्पक विमान उतरा था।
3: तो पुष्पक विमान रावण ले लिया था कुबेर,
1: हाँ, कुबेर से रावण ले लिया था। फिर रावण से जब रावण मारा गया, युद्ध में हार गया, मर गया,
3: हाँ।
1: इसके बाद भगवान राम ने सारी सेना बिठा के उसी पुष्पक विमान में अयोध्या की तरफ आ गए थे।
3: तो एक्चुअली में जब हम देखे, जैसे कथा हमने सुने हैं और फिल्म जो देखे हैं, तो रावण ब्राह्मण बहुत महान था, बड़ा था,
1: हाँ।
3: और उसके पास ये श्रीलंका जो है, कैसे कहते हैं, लंका जो है, ये खौद महल, वो उनका भी नहीं था,
2: सोने का लंका
3: वो उनका भी नहीं था। राजेंद्र जी,
1: हाँ नहीं, वो तो भगवान शंकर ने अपने लिए,
3: पार्वती
1: ने शंकर जी की आग्रह किया था कि ये कुछ ऐसा जगह होना चाहिए
3: जी
1: कि हम लोग जब देखो हिमालय में बैठे रहते, कोई अपना महल नहीं, कुछ रहने का स्थान नहीं। शंकर जी ने बोला कि हमारे लिए ये सब चीज़ नहीं, हम लोग तो एकदम तपस्या वाले लोग हैं, और तपस्या वाले लोगों के लिए घर नहीं होता है, उनके लिए तो पर्वत और गुफाएं ही होती है।
3: हाँ।
1: तो पार्वती जी नहीं मानी, उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तो बनाना ही है। तो उन्होंने फिर जो देवताओं के मिस्त्री थे उनको बुलाया, विश्वकर्मा जी को, और उन्होंने ऐसे नजर फिराई, और नजर फिराते ही बन गया सोने की लंका। और समुद्र के बीच में पानी में उन्होंने बोला कि ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ कोई न जाए, केवल अलग सी जगह समुद्र में बीच में बना दी। और जब रावण वहाँ पे इस प्रकार से लंका बनाई और फिर उसके उद्घाटन के लिए बुलाया पंडित जी को, तो पंडित जी ने सोचा कि, उन्होंने बोला कि मांगो क्या मांगते हो,
3: शिव जी का,
1: पार्वती जी ने बोला कि मांगो क्या मांगते हैं, तो उन्होंने बोला कि रहने दो, क्या मांगना है, होने दो, नहीं, उन्होंने नहीं नहीं अब तो ये तो उद्घाटन, उन्होंने बोला देना ही है, अगर मैंने जो मांगा तो दे दोगे, उन्होंने हाँ दे दें, अगर देना ही है तो लंका ही दे दो मेरे को, तो वो लंका ही मांग ली। फिर पार्वती जी ने बोला कि जा रावण, तेरे वो तेरे एक दिन ये लंका जो है ये भस्म हो जाएगी, और इसको एक कोई शंकर जी का अंश ही इसका भस्म कर देगा, क्योंकि हमने अपने लिए बनाई थी और तूने यही दान में मांग ली, इसलिए पंडित लोगों को तनी समझ के दान मांगना चाहिए, जो जो जो उपयुक्त हो वही दान मांगना चाहिए, नहीं तो फिर कोई काम नहीं आता, बाद में मुसीबत देता है। तो इस प्रकार से वृतांत था। अब हमारा समय जो है न्यूज की वो, और उससे पहले, न्यूज से पहले पहले हमारा समय तो चल रहा है, उसको हम पहले पूर्ण कर लें, इसके बाद अपना विषय की ओर बढ़ेंगे। तो रावण ने सीता जी का अपहरण पंचवटी नासिक महाराष्ट्र से किया और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी कर्नाटक में पहुंच गए श्रीलंका से होते हुए। आश्चर्य होता है कि हम आधुनिक तकनीक से देखते हैं कि नासिक, हम्पी, लेपक्षी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में हैं, अर्थात ये पंचवटी से श्रीलंका जाने का सबसे छोटा रास्ता है। अब आप ये सोचिए उस समय गूगल मैप नहीं था जो शॉर्टेस्ट वे बता दे।
0: नाफी खातर भी नहीं होंगे ना?
1: ना ना वो तो अभी नाफी खातर तो अभी हुआ कुछ
0: नहीं, नहीं ऐसा क्यों मैं क्योंकि ऐसा मैंने क्यों कहा
1: हाँ,
0: क्योंकि आज से कुछ साल पहले घर से बच्चा जब पैदा हुआ तो स्कूल जाने लगा तो उनका ये प्रश्न था कि पापा आपके पास पहले कौन सा आईफोन था, इन था या कौन सा आईफोन था, क्योंकि अब तो आईफोन बड़ा ऊंचे नंबर से है ना
1: हाँ।
0: तो वो लोग बच्चे लोग सोचते कि पहले कुछ और था
1: और रहा होगा,
0: जैसे कि विंडोज अख्तर नहीं तक पहले चलते थे आप और छोटे होते, ये प्रश्न वो लोग के होते हैं बच्चों के कि कैसे पहले उतना बड़ा था अब और कम हो गया। तो इस प्रकार से जैसे कि आप कह रहे हैं राजेंद्र जी आगे बढ़िए।
1: हाँ तो फिर यही बात है आगे कि सबसे छोटा और सीधा मार्ग कौन सा है, क्योंकि गूगल भी नहीं था कैसे पता चला होगा उस समय। अगर भारत विरोधियों के अहम संतुष्टि के लिए मान भी ले कि चलो रामायण केवल एक महाकाव्य है, कुछ लोग कहते हैं कि रामायण कोई सच नहीं है काव्य है,
0: काव्य
1: बताया गया है जो वाल्मीकि ने लिखा, तो फिर ये बताओ कि उस जमाने में भी गूगल मैप नहीं था तो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि को कैसे पता लगा कि पंचवटी से श्रीलंका का सीधा छोटा रास्ता कौन सा है। महाकाव्य में तो किन्हीं भी स्थानों का जिक्र घटनाओं को बताने के लिए आ जाता है, लेकिन क्यों वाल्मीकि जी ने सीता हरण के लिए केवल उन्हीं स्थान का जिक्र किया जो पुष्पक विमान का सबसे छोटा और बिल्कुल सीधा रास्ता था। ये ठीक वैसे ही है कि आज से 50-500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे पता कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताही मधुर फल जामुन, यानी 152 मिलियन किलोमीटर। आप समझे ला मिलियन कितना कर बोले ला?
0: बहुत, तो में जीरो काफी होता है।
1: देखो इकाई एक, दहाई दो, सैकड़ा तीन, हजार चार जीरो लगता तो 1000 होता है
0: जी।
1: इकाई दहाई सैकड़ा हजार, फिर 10000, फिर 10000 को 1 मिलियन बोले
0: हाँ जी।
1: तो जब 152 मिलियन हो गया तो इतना दूरी है पृथ्वी से सूर्य की 152 मिलियन किलोमीटर।
0: सही बात।
1: तो कैसे उन्होंने लगाया? जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, जुग सहस्त्र जोजन मतलब 152 मिलियन किलोमीटर, जबकि नासा ने हाल में कुछ वर्षों में इस दूरी का पता लगाया है। नासा जो एक साइंटिस्टों का सेंटर है जहां से सब चीज़ों का पता लगाया जाता है, तो उन्होंने पता लगाया तो एकदम एक्यूरेट निकला है। तो इसीलिए कहते हैं कि जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, इसलिए हमारे जो रामायण है, भगवद गीता है, पुराण है, भारतीय, ये ऋषियों मुनियों ने जो घोट घोट के और खींच खींच के और खोज खोज के काम किया है वो आज भी एक्यूरेट है। और विज्ञान अभी उस वहाँ तक नहीं पहुँचा, विज्ञान तो केवल देख रहा है अभी कि कैसा हो रहा है, लेकिन वहाँ वो ऑलरेडी उस समय न होते हुए भी इतनी सुविधा हो चुका था। तो अब हमारा समय जो है न्यूज की तरफ चलता है, बात करते हैं फिर आगे की।
0: जरूर न्यूज और कमर्शियल की ओर,
1: कमर्शियल
0: वालों आप हम लोग से जुड़े रहना क्योंकि अभी न्यूज और कमर्शियल के बाद हम सब फिर दोबारा और आज का ऑफिशियल विषय जो उसे लेकर हम सब आने वाले हैं, तो उसे लेकर हम सब आने वाले हैं, तो उसे लेकर हम सब आने वाले हैं। ये फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब यहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है दनहाग शहर से न्यूटन स्ट्रैट 25। ये कार्यक्रम जो ज्योति का प्रकाश, जिसमें हम सभी मिल करके और कुछ न कुछ संदेश रखते रहते हैं, और शांता जी भी तैयार हो गए हैं कुछ हम सबको सुनाने के लिए। शांता जी आज का और मौसम के अनुसार तो मौसम तो भी ठीक है ना?
4: मौसम तो ठीक रहेगा भी।
0: बबली जी आप, मैं देख रहा हूँ कि कुछ सुनाने वाले हैं। हम सब अभी विषय की ओर बढ़ने वाले हैं क्योंकि विषय जो आज का है, राजेंद्र जी क्या मैं वो विषय के बारे में कह सकता हूँ?
1: जरूर जरूर, विषय के बारे में तो कहना ही चाहिए।
0: एक शाम प्रेमी के लिए, तो एक शाम जो प्रेमी के लिए अभी हम सब सुनाने वाले हैं अपने सभी सुनने वालों के लिए, पर बबली जी भी यहाँ भी कुछ संदेश लेकर उपस्थित है सुनने वालों। और बबली जी आपका माइक इस समय ऑन है तो आप अपना संदेश जरूर सुना सकते हैं।
2: हाँ जी जरूर। कल दोपहर मैं बैंक में गया था।
0: आए?
3: अच्छा,
0: पैसा निकालने का क्या?
2: नहीं, ये जो मैं आपको सुना रही हूँ उसमें है।
0: अच्छा, एक वृतांत।
2: हाँ जी, वृतांत में है
0: तो सुना दीजिए।
2: वहाँ एक आदमी भी अपने काम से आए थे, वहाँ वह कुछ ढूंढ रहे थे, मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए उनसे पूछा तो वह बोले बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसा निकालने की स्लिप भरनी है, उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मदद कर दे। मैं बोला आपको कोई हर्ज ना हो तो मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ। उन्होंने मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। रकम निकालकर उन्होंने मुझसे पैसे गिनने को कहा। मैंने पैसे भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो वह बोले सॉरी तुम्हें थोड़ा कर्ज तो होगा परंतु मुझे रिक्शा करवा दो। इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी होता है। मैं बोला मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं तुम्हें कार से छोड़ देता हूँ। वह तैयार हो गए। हम उनके घर पहुँचे। 60x100 के प्लाट पर बना हुआ घर क्या बंगला कह सकते हैं। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वह थोड़ी डर गई कि इनको कुछ हो तो नहीं गया जिससे उन्हें छोड़ने एक अपरिचित व्यक्ति घर तक आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, यह मुझे छोड़ने आए हैं। फिर बातचीत में वह बोले इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं।
0: क्या कहे उसने बबली जी?
2: इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं।
0: ऐसा?
2: हाँ जी, उन्होंने अपने घर को भगवान का घर बोला। तो
0: क्या संदेश?
2: मैंने जब उन्हें भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना है कि यह घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है और वह बोले भगवान का घर बोला तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा सद विचारों से ओत प्रोत रहते हैं। बाद में मजाकिया लिहाज में बोले लोग मृत्यु उपरांत भगवान के घर जाते हैं परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। यह वाक्य ही जैसे भगवान ने दिया कोई प्रसाद ही है। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं, यह वाक्य बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे। हमको उपरोक्त प्रसंग से प्रेरित होकर अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही होंगे। अच्छे कार्य का परम सब जब से भी करो वही नई सुबह है।
0: अति सुंदर संदेश जो बबली जी आपने रखे कि सर्वप्रथम कि ये देखो जब शादी होता है ना, पति पत्नी का शादी होते हैं तो जीवन कितना शुरू अच्छा लगता है और फिर बाद में बच्चे आ जाते हैं तो और भी क्या कहते हैं उसे कि फ्रुक्दल कलीफ हो जाता है ना। पर समय आने के बाद समय आने पर और सब जा कर के बच्चे जब समय पे बड़े हो जाते हैं तो फिर पंछी की तरह उड़ जाते हैं।
2: सही बात।
0: और उड़ जाते हैं तो ये होता है कि दिवाली के माता पिता अकेल दिया जलाते हैं, ऐसा हो जाता है। और ये बात हो जाता है कि हमें भी इस बात पे ध्यान देना है कि हमारे माता है हमारे पिता है, आजकल तो हम सभी के पास हो गया है। ये फोन को क्या कहते हैं शांता जी, इसको बोलते हैं स्मार्टफोन ना, तो कम से कम स्मार्टफोन द्वारा उनसे बात कर सकते हैं, शायद थोड़ा दूर होगा पर हमें उन्हें उन पर ध्यान देना। और ये संदेश जो आपने रखे कि बूढ़ा व्यक्ति यानी कि वृद्ध व्यक्ति ये संदेश दिया कि हम भगवान के घर में रहते हैं और हम क्या कहते हैं,
2: हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारे घर में रहते हैं।
0: किसी को कहे भाई चलो सत्संग चलते हैं मंदिर या कहीं भी सत्संग हो रहा है, तो बोले कहाँ जाए, ठंडा मौसम है।
2: सबसे बड़ी बात कहेंगे समय नहीं है।
0: समय तो हाँ ये भी हो जाता है। शांता आपके पास समय होता है? हर वक्त समय। राजेंद्र जी जिसके पास तो समय का कमताई फिर भी वो समय बना करके यहाँ हम लोग के साथ रहते हैं।
2: कहते हैं किसी चीज के लिए समय हो चाहे ना हो, सत्संग के लिए समय जरूर निकालना चाहिए।
3: अगर हम कहें कि हमें समय नहीं, तो अगर हम कहें कि हम समय नहीं हमारे पास, तो हम नहीं होंगे
0: तो हम नहीं होंगे। सही बात। राजेंद्र जी और क्या संदेश है? क्यों ना हम एक पहले एक सुंदर सा और गीत की ओर बढ़ते हैं।
1: जरूर,
0: क्योंकि जो पिटारा जो लेकर भारी भारी लग रहा था।
1: हाँ, वो गीत के जो बोल हैं कि तुम ही मेरे मंदिर,
3: उसी के धुन
1: श्याम बाबा की धुन पे बहुत ही अच्छा भजन जो शांता जी के पिटारा से निकलता है, वो तो खास होता ही है, लेकिन और भी खास हो जाता है जब भजन के माध्यम से होता है। तो सुनते हैं।